0: किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात यह कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मजे से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
1: टूर भी किया था उसको लेके?
0: नहीं, टूर नहीं किया,
1: सिर्फ दिल्ली में किया।
0: दिल्ली में किया हाँ। और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, समझ में तो आती ही है दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवें दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पांच छह दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जो तू तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था चंडीगढ़ का,
1: हाँ
0: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है हाँ वगैरह वगैरह का। मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी, जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग।
1: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया मराठी नाटक पंजाबी जी, में होने लगा। यहाँ से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
0: दूरदर्शन अब मुझे याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता। लेकिन
1: जहां तक मुझे याद है आप आकाशवाणी भवन गई थी।
0: हाँ नहीं वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ एकदम वहां से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर
1: जी,
0: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
1: डिक्शन जी
0: हाँ, डिक्शन एंड ड्रामा हाँ। तो वो एक साल ही मैंने वहां पढ़ाया और मेरे ये सुन के आपको आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
1: बड़े दिग्गज लोग
0: एब्सोल्युटली, जलाल आगा, साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर था श्याम बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक की हीरोइन, फिर राकेश पांडे
1: जी,
0: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
1: उनको लेकर एक फिल्म लॉन्च हुई थी संगत,
0: किसकी?
1: राकेश पांडे को लेकर कुछ कुछ फिल्में
0: हाँ
1: लॉन्च हुई थी पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
0: नहीं उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
1: उसमें
0: उसका हीरो था
1: जी
0: हाँ राकेश।
1: बाद में बाशु दा ने एक फिल्म लॉन्च की थी संगत, उसमें अच्छा, भी वो हीरो थे पर वो बनी नहीं,
0: वो नहीं नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने, यहाँ तक कि मुझे एक बार फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ बच्चन है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे तब, दुबला पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया।
1: शैलेंद्र सिंह वगैरह भी थे?
0: नहीं नहीं
1: अच्छा।
0: मेरे क्लास में नहीं ना, तो ये हुआ। और हाँ जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया, और हाँ उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के हाँ, बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे।
1: वाह वाह वाह,
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली हाँ सब रवैया, तो वो थे और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली ये, बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्योंकि प्यूना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से
1: जी।
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो और उसमें वो तीन कैमरा और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, आई टेक ऐसी।

0: सब उन्होंने मुझे सिखाया और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं।
1: क्या बात है, ये ख्वाब भी नहीं था,
0: ख्वाब भी नहीं था,
1: ये जगह जिंदगी ले जाने वाली,
0: मेरी कार्य भूमि बनने वाली है 8 साल के लिए। और तब ये इश्तहार पढ़ा जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहां चुनी गई मैं। और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे, भारत के पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या शानदार बात है, वाह वाह,
0: बहुत नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे, कुमार वासुदेव, पी कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और हबीब तनवीर थे।
1: क्या बात है, वाह।
0: लेकिन हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में, तो विच इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 magic years इन टेलीविजन। और वहां ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है, क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल, यू नो, कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे
1: जी,
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मजा भी बहुत आया।
1: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अबू अवार्ड जीता,
0: हाँ, यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, हाँ, तेहरान में,
1: वो चाय की टपरी वाला,
0: हाँ जी, वो छोटी सी फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी, चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह, और वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहां ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था, और इट वॉज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वॉज, इट डिडन्ट हैव एनी डायलॉग, नथिंग, तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेलीफिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेलीफिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह,
1: जी
0: से।
1: जी, हाँ, पोस्टर बनाने वालों पर काम
0: पोस्टर,
1: किया,
0: पोस्टर, हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
1: हैंड पेंटेड पोस्टर्स,
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहां वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सका, पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहां हम पहुंच गए, तो क्या बात करें वो लोग, और मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना, तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे, तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह,
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को,
1: क्या बात,
0: तुम लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई

0: नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा, अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे हाँ पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी,
1: वाह
0: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक, तुम देखोगे खुश हो जाओगे, और वो चलता है, वो नहीं बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा कान छुए मानती हूँ, और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई है,
1: पूरी
0: पूरी
1: वो,
0: वो
1: क्योंकि अब तो
0: कॉम
1: पोस्टर सब
0: कॉम ही
1: डिजिटल हो
0: गायब
1: गए
0: हो गई
1: है ना।
0: है।
1: एम एफ हुसैन मिले थे जी,
0: हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू मुझसे ज्यादा आपको मालूम है क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर, ऐसे
1: महाराष्ट्र में एक बड़ी
0: तोबा,
1: परंपरा थी
0: हो
1: जी।
0: तोबा तोबा। मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है, और इत्तेफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन, तो बहुत खुशी से वो, हाँ हाँ मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया, और क्या कहूं, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था
1: जी
0: तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की,
1: अरे अरे
0: अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
0: हाँ,
1: ये ख्याल कैसे आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको
0: कठिन
1: तोलो तो ये नाराज
0: या
1: वाला जो
0: हाँ
1: मामला था
0: नहीं,
1: वो भी
0: वो
1: थी।
0: कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम
1: जी
0: बड़े चाव से। तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहां से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को,
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए, तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को, वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो, फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता, अच्छा कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज पलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद, कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म, ऐसे नहीं नहीं दादा ऐसे कैसे वगैरह वगैरह, खूब फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए, और मुझे इतना याद है वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ
0: करके
1: वो इसी तरह बोला
0: पुकारते
1: करते थे और
0: थे
1: खरजदार आवाज से
0: हाँ
1: रुक
0: बिल्कुल,
1: रुक के बोलते
0: माय डियर सिस्टर करके, फिर हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक, मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया, और उनका वो गाना दो नैना
1: मतवारे
0: मतवारे, हाँ
1: तिहारे
0: हाँ
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करें।
0: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ, तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो, और दीदी पास सुन रही होंगी, तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया, और फिर दादा उसमें रंग में आए, और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे हाँ, उन्होंने कहा
1: वाह वाह
0: वैसे क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया, तो ये ऐसे ऐसे किया, और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किससे सुनाया ये कर, फिर अब राय चंद बुराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है
1: समकालीन म्यूजिक
0: डायरेक्टर और

0: रायचंद बुराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी जी,
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बुराल साहब के पास गए, बुराल जी ऐसा नहीं, पंकज से उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी।
1: कैसे
0: मैंने कहा नहीं नहीं बोराल साहब, ऐसे कैसे कह सकते हैं फलान का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह। और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और शख्स को मनाया,
0: हेमंत कुमार, बिल्कुल। और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस के साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। इस तरह हमारी फिल्म बन गई, लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है।
1: ओहो,
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना, पंकज मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई बहार,
1: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है। 40 इसकी फिल्म है, शायद 41 की फिल्म है, आई बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए नाम मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।

0: साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में, कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों
1: पता नहीं।

0: कुछ बात ही नहीं बनी। जहां इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था, किसी के भी बीच एक वो खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि देवर कन्विंस दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
1: विच इज नॉट ट्रू।
0: विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। आशा और लता दोनों बहने दूसरे को बहुत चाहती है, बहुत बहुत प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती है तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था, तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी। और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
1: जी
0: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज।
1: जी
0: देन इन माई फिल्म द लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देर आर सो मेनी डिफरेंसेज। इनफैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हर सेल्फ अरुणा ईरानी
1: जी
0: डाइज यू नो इन द फिल्म, सो अगेन, एंड लता जी वॉज विथ अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो देर इज नथिंग, रियली नथिंग, इट इज नॉट एट ऑल
1: लोगों ने जबरदस्ती इसका कनेक्शन बना
0: बायोग्राफिकल
1: लिया।
0: फिल्म नहीं थी।
1: जी
0: हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहने वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव। बट आई टेट दिस एंड टोल दिस एंड टिल आई वॉज ब्लू इन द फेस, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दे आर कन्विंस की नहीं, ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई, पर अब एंड
1: जाकिर साहब को
0: उनको
1: कैसे राजी किया?
0: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए, बहुत माने। ही गेव गुड म्यूजिक, बट आई हैड फोर म्यूजिक डायरेक्टर्स
1: जी, पहली बार ऐसा हुआ।
0: या क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेंद्र हजारिका,
1: जी
0: फोर पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टूगेदर एट सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स, नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल। हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड। तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे सात आठ लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड। एक भी फिल्म दो तीन दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक, एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theatre to show any film because they have not paid their dues. So Saaz didn't have a theatre.
1: अरे
0: तो
1: अरे
0: फिर
1: अरे
0: टेलीविजन पे दिखाई।
1: जी जी जी
0: तो ऐसा ऐसा हुआ। सो बैड लक ऑल द वे। सो इट्स नॉट बीन अ जो एक हैप्पी ये होता है ना एक्सपीरियंस, तो अनफॉर्चुनेटली Saaz वॉज नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर मी।
1: जी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ। एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो एक तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव कुमार या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं जानना चाहता
0: हूँ। अभी वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है
1: जी,
0: तो
1: थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटक था तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही, फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे घर दिल्ली में मतलब रह भी चुका था, आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था।

0: तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा। फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है। तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है, फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है तो वहां ले आओ स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं। तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था। ऐसे 5-6 दफे हुआ और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी। तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है। और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है। और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई। अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर वन हीरोइन थी और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे। वो लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है? वो हवा में नहीं लिखा जाता लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है, वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा। और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह कह रही हो, कहते हाँ मेरी बहन है लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई। संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी।
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है, मुझे नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं सुन रहे हैं और धीरे धीरे क्या मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही। फिर आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी बहरहाल। तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगी क्या। मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए। दो दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव्ड द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना। और फिर मिलते हैं, फिर हम मिल गए। और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बासु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बासु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ। और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया।

0: तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुमके प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। और इसकी वजह ये थी कि बासु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहां उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बासु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए। और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो, तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट एंड देन शबाना'ज नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर would not make a good couple, you know. तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना was thrilled to bits, और फिर शबाना और नसीर तय हो।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खास तौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी जी जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी।
0: ड्रामा के नहीं, वो
1: नॉवेल के डायलॉग में बात हुई थी,
0: और चार्ल्स डिकेंस जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग। लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है। नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब। एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो, और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूँ कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो चैप्टर स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि मेरे और काम
1: भी, एंड देन वन डे,
0: एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
1: जी, हाँ? जी,
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है, हाँ? उसका नाम है बार्किस। और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे को चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा। और पेगटी बिचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए। तो लेकिन बार्किस बड़ा गुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी चुपड़ी
0: चुपड़ी। हाँ, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग, मतलब बार्किस राजी है। राजी किस लिए? शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे, तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग।
1: वाओ,
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेट

0: ऑटोमेटिकली उसको मालूम है 100% कि ये बारकिस क्या बला है क्या है।
1: हाँ, हाँ।
0: तो फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड।
1: क्या बात है, इसको कहते हैं नहले पे दहला।
0: नहले पे दहला, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर काम शुरू हुआ एंड ही वॉज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य अकादमी का।
1: बिल्कुल। हाँ। और नसीर ने काफी तैयारी की थी इस वर्ष के लिए।
0: अरे बाबा, काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो
1: जी।
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है। हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के। तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इम्पोर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलां ढिमका सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ है, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम नाउ। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ, एक मजे की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे? संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी

0: कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की नसीर को, और मैं देन ही सेड कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए। अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता।
1: जिंदगी की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है,
0: जब बताइए जरा कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए ये स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इट्स वंडरफुल।
1: तीन अवार्ड मिले थे
0: जी, एक पटकथा के लिए मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ
1: वो बताइए।
0: वो वहाँ बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था, बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे बासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए।
1: क्या बात है।
0: यस, एंड ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब फिरोज रंगून वाला।
1: जी हाँ,
0: फिरोज रंगूनवाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वाज गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च आई वाज इनवाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब अच्छे स्टार से, कहता ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी तो ये बहुत गलत है कि स्टार हो तो, इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटेस्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बासुस। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब, और हमारा जो मैनेजर था सुदेश सयाल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बेचारी अकाउंटेंट बन गई।
1: मजेदार बात है,
0: सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही बासु का।
1: यहाँ मुझे लगता है तो अनुभव का गाना सुन लेंगे।
0: हाँ हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जानको
1: मेरी जान मुझे जानको,
0: क्या बात है, कनू रॉय। अरे वो तो इतना गाना सुंदर है। जी जरूर जरूर।
1: क्या बात है।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: कल्याण जी आनंद जी का सर्वाध्यक्षीय ये भजन आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी की रचना थी। अलका याग्निक और साधना सर्वम के स्वरों में नास्तिक फिल्म से ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: राजेश्वरी सचदेव को आप सुन रहे थे एल्बम थी हुल्ले हुल्ला रे, नक्श लालपुरी के बोल थे अमर हल्दीपुर की तरज थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: मीरा का मोहन फिल्म का दो गाना आप सुन रहे थे, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। इंदिवर की रचना थी, अरुण पौडवाल की तर्ज थी। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटि भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

ये गीत आप सुन रहे थे, टाइटल सॉन्ग था आप आए बाहर आई फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी की रचना आपने सुनी फिल्म अप्रैल फूल से, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन लाया।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: इंटर बाबू फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार के बोल थे उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोता लम्हे फिल्म का गीत आपने सुना, शिवारी की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, आवाजें थी लता मंगेशकर और इला अरुण की और साथियों की भी आवाजें थी।
1: जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल,
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

निकल जाए तो हमें।

0: बप्पीलाल हरी का संगीत था अनजान के बोल, आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। नमक हलाल फिल्म का गीत आपने सुना। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फर्ज फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओ, मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत

0: जाए
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
0: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
0: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
0: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
0: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: कल्याण जानन जी की तर्ज थी इंदिवर के बोल, मुकेश की आवाज, फिल्म सफर का ये गीत आपने सुना। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए श्रोताओं आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और भेज सकते हैं आप इस पते पर अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ चुके हैं श्रोताओं, तो अपने रेडियो श्रोताओं के लिए और सभी श्रोताओं के लिए एक बार आज की इबारत पढ़ देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो कार्यक्रम है हमारा वो इबारत पर ही बेस्ड है। तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे शब्द भी भेजे हैं और गीतों को कुछ चुनकर भी भेजा है। तो ये है आज की इबारत। वो बूंद फूल सी आसमान से चली जो कमर से कभी तो कभी सितारों से पूछा कि जमीन से मिलन कैसा होगा, मोहब्बत की कसम खाई है जो सीप से वो मोती सा बदन कैसा होगा, चेहरा शीशे का आंचल पानी का दिले बेताब ये जिंदगी का सफर कैसा होगा, कभी जमीन को देखूं तो कभी चांद को मौसम हिमाकत कहे जो मेरे इम्कान को, बदरा छूटा सफर की रात हुई दलदल पत्थर निर्जन बसेरों पर गिरकर बर्बाद होने की चिंता बेकार थी, कुछ यूं ठहरी मैं सीप में कि बूंद से मोती बन तैयार थी। आप सभी ने बहुत सारे शब्द भी भेजे हैं श्रोताओं, गीतों को भी चुनकर भेजा है और आपके रेडियो सेट पर बिल्कुल शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

इस गीत के कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं और गीतकार बताने हैं। एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि आज के इस खूबसूरत और काव्यात्मक गद्यांश का मुख्य विषय है जीवन की अनिश्चितताओं से गुजरकर आत्मखोज, धैर्य और रूपांतरण का सफर। ये पैराग्राफ एक सकारात्मक संदेश देता है। ये बताता है कि जीवन का सफर भले ही अनिश्चितताओं, डर और मुश्किलों से भरा हो, लेकिन अगर आपके भीतर धैर्य है तो आप हर चुनौती को पार करके अपने जीवन को सार्थक बूंद से मोती बना सकते हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को भी चुना है। एक हमारी श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बारिश की बूंदों की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती है। बारिश की बूंद की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती है। उसी तरह आसमान से गिरती भी बूंदें अपने भविष्य को लेकर उत्सुक भी हैं और अनजान भी। अनेकों गिरती बूंदों को अपनी मंजिल का पता नहीं होता। रास्ते में बादल बिछड़ते हैं, पत्थर मिलते हैं, अंधेरी रातें आती हैं और कई बार लगता है कि सफर यहीं थम जाएगा, लेकिन हर बूंद का नसीब ऐसा नसीब मिट्टी में खो जाना नहीं होता। कुछ बूंदें सीप की गोद में ठहरती हैं और समय उन्हें मोती बना देता है। इसलिए सफर की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार मंजिल हमारी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होती। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंद जो बन गई मोती, बादलों के आशा से बिछड़ बूंदों का जमीन तक का सफर की दास्तां बयां करती इबारत अपने खुशकिस्मती बदकिस्मती की सूरत हाल पर चिंतित सफर का अंत तह मंजिल सीप में आश्रित हो संतुष्टि सह सुखांत हुई। बूंद का ये सफरनामा होना चाहिए, इंसानी दिनचर्या को संदेश दे जाती है। विघ्न बाधा सामयिक होते हैं, मनोबल से मंजिल देर सवेर जरूर मिलती है। तो आप बता सकते हैं कि आपकी मंजिल क्या थी और क्या आपको मंजिल पाने में कोई कठिनाई सामने आई। वैसे मंजिलों की राह कठिनाइयां तो बहुत सारी आती हैं। बूंद पर अगर कोई कविता आपने पढ़ी है या आपने खुद लिखी है तो आप हमें बता सकते हैं श्रोताओं। और इस गीत में आपको कलाकार भी बताने हैं और संगीतकार बताने हैं।

श्रोताओ, आपके शहर में बूंदों का क्या हाल है, यानी बारिश का क्या हाल है? बारिश हुई कि नहीं? वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमारे वाराणसी में यानी बनारस में तो बारिश नहीं हुई, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि एक छोटी सी बूंद जब आसमान से उतरकर सीप के भीतर समा जाती है तो समय के साथ वही बूंद एक अनमोल मोती बन जाती है। यह सफर हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष, इंतजार और धैर्य के बाद ही असली निखार आता है। बूंद से मोती तक का सफर दरअसल उम्मीद, मोहब्बत और जिंदगी के खूबसूरत बदलाव का सफर है, ऐसा ये लिखती हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सीप ने बूंद से उसकी मंजिल नहीं पूछी, बस उसे अपने भीतर जगह दे दी। शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जहां अपनापन मिलता है वहीं रहकर वो अनमोल बन जाते हैं। जी हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है श्रोता। और हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि कौन से हैं कलाकार, जी हाँ, वैजयंतीमाला और देवानंद साहब नजर आते हैं इस गीत में। ज्वेल थी फिल्म का गीत था, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है। और आरजू फिल्म के गीत में गीतकार थे हसरत जयपुरी, राजेंद्र कुमार और अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया गीत हमने आपको सुनवाया था। और एक सवाल और है आपसे कि आजकल बारिशों में एक फूल बड़ा नजर आता है श्रोताओं, और वो फूल क्या आपने देखा है? हमारे यहां तो इसे गुल मेहंदी का फूल कहा जाता था और हर जगह दिखाई दे जाएगा बारिशों के मौसम में। क्या आपने देखा है? वैसे कई रंग में खिलता है, आपको अगर पता हो, आपने अगर देखा हो या आपकी बगिया में अगर है तो आप बता सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि जब बूंद आसमान में है तो उसमें जिज्ञासा भी

और अनजाने का डर भी दलदल पत्थर निर्जन बसेरों पर गिरकर यह हमारे जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम किसी नए मोड़ पर कदम रखने से डरते हैं, कहीं हम बर्बाद न हो जाएं। जब हम अज्ञात के डर को छोड़कर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो जीवन की चुनौतियां हमें नष्ट करने नहीं बल्कि हमें निखारने और मोती बनाने आती हैं। जी हाँ, कष्ट तो होता है, बहुत सारी जो रास्ते में अड़चने हैं वो भी आती हैं, लेकिन फिर भी आगे का रास्ता यानी सफर तो जारी ही रहता है। यही हाल बूंद का है और हम सबका भी। आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं और संगीतकार।

कोहिनूर फिल्म का गीत आपने सुना, दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया, नौशाद की तर्ज थी और इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उन सभी श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो कार्यक्रम में नए जुड़े हैं। एक श्रोता ने हमारे लिखा है कि बनारस में छिटपुट बादल बरस रहे हैं और सुरीला सफर में फिर बारिश होने की संभावना है। जी हाँ, संभावना है, लेकिन देखते हैं कि बरसते हैं या नहीं। तो इन्होंने गीत भी पसंद किया है, दो सितारों का जमीन पर है मिलन, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिले बेताब को सीने से लगाना होगा, जिंदगी का सफर, तमाम गीत। एक और हमारे और श्रोता लिखते हैं कि मैं एक शेर पेश करता हूं अपने श्रोताओं की नजर करता हूं, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया आकाशवाणी मुंबई को घायल बना दिया। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे

अरे सब यानी हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे अपने अपने शहरों में। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो से मुझे बहुत प्यार है, ये बचपन से ही रेडियो मैं सुनता हूँ। 30-35 मोबाइल को खराब कर दिया है, सुबह से चालू करते हैं तो रात के 12 के बाद ही बंद करते हैं। लव यू रेडियो, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब भाई 30 से 35 मोबाइल आपने खराब कर दिए हैं, क्या कह सकते हैं। रेडियो विविध भारती भी आप सभी के संग है श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमान की असीम गहराइयों से शुरू होकर धरती की प्यास गोद तक का बारिश की बूंदों का सफर प्रकृति का सबसे सुंदर और जीवंत काव्य है। गहरे कजरारे बादलों के झूलों में बूंदों का बचपन पलता है। जब बादलों का सब्र टूटता है तो ये नन्ही बूंदें अपनी अनंत यात्रा पर निकलती हैं। आसमान से नीचे आते हुए बूंदें हवा के अदृश्य हाथों में हाथ डालकर थिरकती हैं। कभी कभी तो ये बूंदें आसमान में सूरज की किरण से सतरंगी इंद्रधनुष की खूबसूरत चुनर ओढ़ लेती हैं। वो पहाड़ों, नदियों, पौधों, सीप और सागर की जड़ों में समाकर एक नए जीवन को जन्म देती हैं। आसमान का ये अनमोल उपहार धरती को समृद्धि का वरदान देकर उसी में लीन हो जाता है। दो बातें इसमें है श्रोताओं, आप उसका जवाब दे दें तो क्या ही अच्छी बात है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बारिशों में क्या इंद्रधनुष आपने देखा है तो आप हमें बता सकते हैं। और एक और है बात ये कि सीप में मोती बंद होता है, लेकिन मोती क्या आपको पसंद है और वो कौन सा पक्षी है जो बारिश की बूंदों के लिए तरसता है और बैठा रहता है कि कब बारिश होगी, कब पानी मिलेगा पीने को। कलाकार अगर आप पहचाने तो बता सकते हैं श्रोताओं।

मीनू मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे गबन फिल्म से। एक श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरती पानी की बूंदें पहाड़ों पेड़ पत्तियों से टकरा कर धरती में समा जाती हैं, प्रकृति का वातावरण खुशनुमा हो जाता है, सीप में गिरी बूंद चमकती मोती बन जाती है, हमें ये सिखाती है रास्ते में आए हर एक मुश्किलों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक हमारी और श्रोता लिखते हैं कि बारिश की बूंदें हमें एक अनमोल सीख देती हैं, वे जितनी ऊंचाई से आती हैं उतनी ही विनम्रता से धरती में समा जाती हैं, न कोई अहंकार न कोई शोर, बस चुपचाप हर सूखी जिंदगी में हरियाली और उम्मीद बो जाती हैं। अगर ये बूंदें अपने बादलों से बिछड़ने का साहस न करती तो शायद धरती कभी इतनी हरी भरी न होती। कभी कभी जीवन में बिछड़ना भी नई शुरुआत का कारण बन जाता है। यही अनंत सफर बादल से धरती, धरती से नदी, नदी से सागर और फिर सागर से बादल, सफर चलता रहता है कभी थमता नहीं। मुझे एक बात बताइए श्रोताओं, क्या आपने ओस की बूंदें देखी हैं और क्या इन्हें पत्तों पर कभी छुआ है, तो जरूर बताइए। एक और श्रोता लिखती हैं कि बारिश के मौसम में बादल आसमान में छाए हों और बारिश न हो रही हो तब भी बूंदों का एहसास मन में बना रहता है, जादुई भी है बारिश, संगीत ले आती है, धुआं धुआं सा आसमां बना देती है, बादल भरे भरे गगरी सी छलकाते प्रतीत होते हैं और ऐसे में मन का हाल न पूछो, मन तरल हो उठता है, पिघलते आसमान धरती को कितने सुकून से भर देता है, ये तो हम चारों तरफ की हरियाली देखकर जान जाते हैं।

जो मोती हम पहनते हैं श्रोताओं, वो ये बूंद ही तो हैं। क्या आपको ये मोती पसंद आते हैं? अगर पसंद आते हैं तो क्यों पसंद आते हैं, ये हमें जरूर बताइए। अनमोल मोती फिल्म का गीत आपने सुना, और तालाब में कौन सा फूल है ये आपको बताना है। बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया, महेंद्र कपूर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम भोपाल में तो जरूर सुहाना है, लेकिन धूप निकली हुई है और उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो। बाकी समय बिताने के लिए विविध भारती ही है। जी हाँ, बारिश तो होनी ही चाहिए, होगी, थोड़ा इंतजार तो करना होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पपीहा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से ही संतुष्ट होता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में अयोध्या सिंह हरिऔध की कविता पढ़ी थी, एक बूंद। क्या आपने भी कोई कविता लिखी है श्रोताओं, या बूंद पर कोई पैसेज, कोई इबारत, कोई बात आपने लिखी है तो आप जरूर हमसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेन लिली और जीनिया के फूल नजर आते हैं। जी हाँ, ये वही फूल हैं जिन्हें हम गुलमेहंदी का फूल कहते हैं, और इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी रंग जो होते हैं, कलर बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये किन किन कलर्स का होता है आप चाहें तो बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ज्वेल थे फिल्म का गीत था, देवानंद और वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में हमें सबसे अच्छी वो बूंद जो सीप में जाकर मोती बन गई। बूंद को ये नहीं पता कि उसका सफर कहां खत्म होगा, फिर भी वो चलती रही, शायद इसीलिए वो मोती बन गई। जिंदगी भी उन्हीं का साथ देती है जो मंजिल से पहले उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते। और एक और श्रोता ने लिखा है, इसमें बारिश, बूंद, फूल, आसमान, चांद, सितारे, जमीन, मोहब्बत, सीप, मोती, बदरा, आंचल, चेहरा, शीशा, सफर, जिंदगी, रात, पत्थर, दलदल, निर्जन, मिलन और इंतजार जैसे शब्द छुपे हुए हैं।

इस फिल्म का नाम आपको बताना है श्रोताओं, और कलाकार भी आप ही को बताने हैं। संगीतकार मैं बता देती हूँ, ओपी नैयर, और गीतकार SH बिहारी, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ओस की बूंदों को पत्तों पर छुओ तो पत्ता मखमल सा लगता है। जी हाँ, और बूंदे भी तो गायब हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अनमोल मोती फिल्म का लोकप्रिय गीत जितेंद्र और बबीता जी पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि सफर बूंद का अंजाम मत पूछें, सबके नसीब में सीप नहीं होते। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे पपीहे के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, एक प्रातः बहुत बार पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इंद्रधनुष का दूसरा नाम भी है मेघ धनुष। स्वाति नक्षत्र 22 तारीख से बैठा है, इनका पानी अमृत समान होता है। थोड़ा संचय कर सकते हैं तो करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो शीशे की बोतल में भरकर रखिए, ऐसा ये कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मीनू मुमताज पर फिल्माया गया गीत था। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वाति के पानी को पपीहरा पक्षी बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करता रहता है कि एक बूंद पानी उसके मुंह में चली जाए। एक और श्रोता लिखते हैं कि पपीहा पानी की बूंदों के लिए तरसता है, जो स्वाति नक्षत्र में बरसती बूंदों के लिए चूंच खोले इंतजार करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोती दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कल्चर्ड, जो कि मोती की खेती करने पर मिलता है। चातक पक्षी होता है जो एक पावस की बूंद पानी का इंतजार करता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, चातक पक्षी की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल वर्षा का जल विशेषकर स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही पीता है, ये माना जाता है। और इंद्रधनुष सतरंगी होता है। जी हाँ, सतरंगी तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से कलर होते हैं ये आपको बताना है। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है, इनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। और चातक के बारे में कहा जाता है कि वो बारिश की प्रतीक्षा करता है, मोती किसी नहीं प्रिय है, ऐसा ये लिखते हैं। जी हाँ, मोती बहुत सुंदर। हमने आपसे ये भी पूछा था कि मोती आपको प्रिय तो लगता है, लेकिन इसका कोई रंग तो नहीं होता। तो वैसे कहा जाता है कि काले और सफेद रंग के मोती होते हैं, तो मोती आपको क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सात रंग होते हैं, बारिश में हल्की सी झलक आप इंद्रधनुष की देख सकते हैं, और इन्हें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वो बूंद का ही भाग्य है जो सीप में गिरकर मोती बन जाया करती है।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म पालकी में और शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था राजेंद्र कुमार वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद सितारे गगन के साथ चांद सितारे बिजली का लेकर हाथों में हाथ बदली की आगोश से छूटकर पानी की बूंदें जब हैं गिरती एक सा चेहरा पर तरह तरह के काम करती सूखी प्यासी धरती पर नवगीत जागती मिट्टी की सौंधी खुशबू बनकर फसलों की हरियाली लाती कमल के कोमल पत्र पर बनकर मोती कभी खोलते तवे पर भाप बन जाती स्वाति नक्षत्र की घड़ी में सागर की सीप में आती बनकर अनमोल मोती एक ही जल के रूप अनेक जैसे संगत वैसा काम बदली की ये नन्ही बूंदे दे देती हैं जीवन का सच्चा पैगाम। और कुछ गीत भी इन्होंने पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि सृजन समर्पण और पुनर्जन्म का शाश्वत उत्सव है। आसमान की असीम गहराइयों से आंचल फैलाए जब नन्ही वर्षा की बूंदे चली तो वो महज पानी का कतरा नहीं बल्कि ख्वाबों का एक समंदर थी। हवा की झोंकों से बातें करती कभी चांद की चांदनी को सहलाती तो कभी सूरज की किरणों से सतरंगी ख्वाहिशें बुनती। और भी इन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोता और बताइए किस फिल्म का है।

फिल्म मधुमती का ये गीत आप सुन रहे थे जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और धरती का मिलन एक पवित्र प्रेम जैसा है और सीप में पलने वाले मोती का बदन उसके सच्चे प्यार की अनमोल निशानी है। बारिश की बूंदें जब प्यासी धरती पर गिरती हैं तो दोनों एक हो जाते हैं और ये अनमोल और अनोखा मिलन आसमान और जमीन के प्यार को दिखाता है। बारिश की बूंदें और सीप का रिश्ता गहरे भरोसे और सच्ची मोहब्बत का प्रतीक माना गया है, इसलिए सीप उसे अपने दिल में बसा लेती है। सीप अपने दिल का दर्द सहकर भी वो बूंद एक चमकता हुआ सफेद और कठोर मोती बन जाती है, इसलिए बूंदें और सीप का मिलना सच्ची मोहब्बत, समर्पण और अनमोल प्रेम की एक सुंदर निशानी मानी जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बूंद जो बन गई मोती फूल आहिस्ता फेंको, और तमाम गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अच्छी वो बूंद है जो सीप में जाकर मोती बन गई, बूंद को नहीं पता था कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर वो चलती रही, शायद इसलिए वो मोती बन गई। एक और श्रोता ने लिखा है, प्यास लिए मनवा हमारा जो तरसे एक बूंद तेरी दया की, जो बरसे आसमान से आया फरिश्ता धीरे धीरे से चलो मेरी बाकी हिरणिया, और तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर बने रहने की चाहत को त्याग बूंद धरती का रुख करती है, जो किसी भी देवदूत से कमतर नहीं होती, उन्हें भी ये ज्ञान भली भांति रहता है कि एक बार ऊंचाई से नीचे आते हैं उनका मौलिक अस्तित्व बदल जाएगा। कोई बूंद कहीं किसी छातक की प्यास बुझाएगी, किसी बूंद को सीप अपने में संजोकर अनमोल मोती के रूप में उस बूंद का कायाकल्प कर देगी, और भी

बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, खेत है, वन है, उपवन, नदी, सागर, झरने, पोखर। क्या आपने बूंदों को ध्यान से देखा है श्रोताओ? तो ये बूंदें जो हैं, कई बार जब हम घूमने जाते हैं सफर पर, तो जो शीशे होते हैं गाड़ी के या ट्रेन के जो शीशे होते हैं, तो इनमें जब ये झरती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं? और क्या ऐसा सफर आपने किया है बारिशों का, या अब भी आप सफर पर हैं?

विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे। सगाई फिल्म से राजेंद्र कृष्ण का लिखा रवि का संगीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अभी नेपाल के बॉर्डर पर हूं, यहां तो बारिश जमकर हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है। तो ये बताइए श्रोताओं, क्या आपको बारिशों का मौसम अच्छा लगता है क्या? एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत दिनों बाद ये गाना सुना, शायद मुस्कुरा दो। जी हाँ, उस गीत के बारे में ये कह रहे हैं, एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का जो था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि एक बार मुस्कुरा दो फिल्म में तनुजा और देव मुखर्जी नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक और श्रोता लिखते हैं कि एफएम पर सुन रहे हैं, लोगों के उत्तर हमें मोबाइल ऐप से जो है वो मिल रहे हैं, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और अब इन कलाकार को आप पहचानिए।

एक हमारी श्रोता लिखती है कि मैंने देखी है ओस की बूंदें छत पर, जब मैं पत्तों पर बूंद रहती थी उसके उसे हाथ से छूने पर सड़क कर नीचे गिर जाती, बहुत अच्छा लगता और इसे देखने के लिए बचपन में जल्दी सोकर उठ जाती थी।

0: ठहर और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा।
1: आखिरी खत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, राजेश खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स के लिए, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, रहिए विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। हम यही सोचते हैं कि पिता बड़े कठोर होते हैं, माता बड़ी कोमल हृदय की होती हैं। सच मानिए तो पिता का हृदय बहुत कोमल होता है। ऊपर से वे कठोर दिखते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों की, परिवार की बड़ी चिंता होती है। वे अपने आंसू पी लेते हैं, दर्द छुपा लेते हैं, क्योंकि ये उनका अपना परिवार बनाया हुआ होता है। वे परिवार के वो स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मा होता है। वे अपनी खुशी से पहले बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए

दिन रात मेहनत करते हैं। पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में कम, कर्तव्यों में अधिक दिखाई देता है। पिता अपनी इच्छाओं का त्याग कर परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, जिससे सब खुशी से रहें और होठों पर मुस्कुराहट बिखरती रहे।

दोस्तों, पिता अपने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। उनकी सुरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन के मूल्यों का आधार बनते हैं। सही गलत का अंतर जीवन की हर समस्या का हल करने वाले होते हैं। उनकी छांव में बच्चे अपने को सुरक्षित पाते हैं। पिता का साथ हिम्मत हौसला देता है। उनके ना रहने पर उनकी कमी का एहसास दिल को झकझोर देता है।

पिता विशाल वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी बाहों में शांति, सुकून और स्नेह का आभास होता है। कभी अपने पिता के पास दो घड़ी बैठकर उनके उस प्यार को महसूस कीजिए जिसे कभी उन्होंने आप पर लुटाया था। अपना बचपन अपने बेटी बेटी में जिया था। उनके कंधों पर बैठकर बाजार घूमा, मेला देखा, हर मौसम में वे ढाल बन जाया करते थे।

पिता और संतान का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव का भी होता है। पिता का प्रेम अक्सर शांत नदी की जलधारा की तरह होता है, जो बिना शोर किए अपने बच्चों के जीवन को सींचता रहता है। पिता अपने पुत्र संग दोस्त की तरह रिश्ता रखता है। पिता अपने बेटे में अपने सपनों, संघर्षों और अनुभवों की झलक देखते हैं। बेटी के साथ पिता का रिश्ता बेहद कोमल, स्नेहमय और भावनाओं से भरा होता है। बेटी के लिए पिता उसका पहला नायक, पहला रक्षक और आदर्श होता है। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता की नजरों में वो नन्ही सी परी ही रहती है। पिता का प्रेम दोनों के लिए समान होता है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार

0: श्रमिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
6: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम

0: उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगत सिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
3: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में

0: महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
2: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। खुशी पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश ओहरी, पूजा और पायल कुमारी
0: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की बाहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
2: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
2: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारतीय फिल्म जगत का सबसे

0: बड़ा सम्मान क्या है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर, और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीत में प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: मुझे छोड़ दो। कहने भी मुझे छोड़।
2: वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
5: नाथ
6: महात्मा
5: प्रभु
6: प्रभु
5: महात्मा
6: प्रभु प्रभु अब जंगल में मत जाएं।

0: वहाँ अंगुली माल है।
1: हाँ प्रभु,
0: वो बहुत बड़ा डाकू है।
2: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाए।
0: हाँ
3: प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
1: ना जाए प्रभु।
4: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहाँ?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्य पूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत।
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: इन पत्तों को जहाँ से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता

0: अने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
1: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
2: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
1: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
2: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
0: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग दीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
3: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
3: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
0: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।

0: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुँचे और वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुल्के, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेन्द्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर

0: विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से मिले।
1: आइए आइए फादर बुल्के, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेन्द्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
1: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
1: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
2: जी अवश्य।
3: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
3: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
0: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
3: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूँ।
5: जी,
0: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
3: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
0: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे

0: पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
0: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
3: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
4: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को प्यार भरा नमस्कार, और दीपा जी आपको भी नमस्कार।
1: सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सखाओं, श्रोता भाइयों और चंचल आपको भी हेल्दी नमस्कार।
0: आप आती हैं तो हेल्दी नमस्कार होता है भाई, हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं, हेल्दी नमस्कार करते हैं, और दोनों ही चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं।
1: प्रेम जितना और स्वास्थ्य भी,
0: बिल्कुल स्वास्थ्य जरूरी है। और कुछ जैसे हम कहते हैं ना, जब मौसम की हम बात करते हैं तो भाई गर्मियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अगर ठंड बहुत पड़ रही है तो उसके हिसाब से, और अब क्योंकि बारिश का मौसम है
1: जी,
0: यहाँ बार बार थोड़ा ठंडा होता है, कुछ गर्म हो जाता है,
1: गर्म हो जाता है। और बस एक हेल्दी नमस्कार बोलने से अगर कोई एक सुनने वाला भी हमारा श्रोता या हमारी बहन कोई
0: जी
1: अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी सजग हो जाती है ना, तो लगता है कि हाँ कहीं कुछ पूर्ण हो गया, कुछ साकार हो गया, तो एक प्रेरणा क्योंकि उनसे मिलती रहती है, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें भी कुछ तो एक दूसरे को मिलके इंस्पायर करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा, और हम इसी तरह से एक दूसरे से प्रेरित होते रहते हैं। और हमने जब बात की मौसम की, और अब बारिश का मौसम है, तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, बारिश में खान पान का कैसे ध्यान रखना है, या भाई कपड़े कैसे पहनने हैं, तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बारिश के मौसम में, खासतौर पर अपने आप को बचाने के लिए।
1: हाँ,
0: उन चीजों की हम बात करें,
1: ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों में बिजली के तार कहीं खुले हैं, कटे हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखना, जिसकी हम विस्तृत से चर्चा
0: बिल्कुल
1: करेंगे।
0: और कई बार बहुत तेज बारिश है और आप घर से बाहर हैं, तो उस वक्त आप अपना बचाव से करेंगे, और इन सब चीजों के बारे में हमारे श्रोता भी हमारे साथ अपनी बातें, अपने अनुभव, या क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी बातें साझा कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और व्यंजन में हम चलेंगे पंजाब की ओर।
0: बिल्कुल, हम छोले भटूरे तो पहले हम चख चुके हैं, यानी कि रेसिपी उनकी आ चुकी है
1: जी।
0: लेकिन छोले भटूरे जैसे ही है छोले कुलचे, जिसमें छोले अलग होते हैं और भटूरे से बिल्कुल अलग होते हैं कुलचे, तो जिसके भी रेसिपीज हमारी जो सखियां हैं जो कि किचन के काम में बड़ी माहिर हैं, वो किस तरह बनाती हैं, अपनी रेसिपी जरूर हमारे साथ साझा करें। और हमारे कुछ श्रोता भाई भी होंगे जो भी अक्सर किचन में जाकर खटर पटर करते हैं और बड़ी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
1: आपको बताएं चंचल कि कुछ इस तरह के जो मैसेजेस हैं आ चुके हैं।
0: हाँ,
1: और हम साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग, जो कि
0: बिल्कुल
1: आपका प्रसिद्ध व्यंजन है, और किसे देश में पसंद नहीं होगा, सब जगह इस व्यंजन को बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है।
0: बिल्कुल, अभी बस बारिश खत्म होते ही जैसे गुनगुनी ठंड चालू होंगी तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, इसकी बहार ही बहार होगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और भरोसा करिए, भरोसेमंद रहें।
0: हाँ,
1: इस बारे में ये जीवन का आधार है, विश्वास करना, भरोसा करना, तो इस बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे संदेश भी पढ़े जाएंगे। और हम अपने श्रोताओं से फिर वही अनुरोध करते हैं कि आपके लिए कब भरोसा बहुत ज्यादा बना या कब कहीं टूटा,
0: हाँ,
1: इस बारे में जरूर बताइएगा।
0: बिल्कुल,
1: क्या ऐसा किस्सा हुआ जिसके लिए लेकर के दिल दुखा, या आप इस बात को यहाँ पर सबके सामने शेयर कर सकते हैं, नहीं कर
0: हाँ,
1: सकते हैं, तो अपनी ये दिल की बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा।
0: बिल्कुल दीपा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े भरोसे से किसी व्यक्ति की, विशेष की वजह से कोई काम करके बैठ जाते हैं कि भाई भरोसा है उन पर, टूटेगा नहीं
1: जी।
0: लेकिन वहां जब वो भरोसा पूरा नहीं होता तो हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारा दिल टूटता है, बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन ये बात हम खुद पर भी लागू होती है कि हम जब किसी और से भरोसा चाहते हैं तो हमें भी उन दूसरों के लिए भरोसेमंद बनना है।
1: बिल्कुल। और आज सोमवार है तो हमारे सभी जो सखी सहेली परिवार के जो साथी हैं इंतजार करते हैं
0: कहानी का। हाँ, तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे?
1: आज हम सुनेंगे अशिक्षित का हृदय। इसकी पहली कड़ी आज हम सुनेंगे। ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी है, तो इसका वाचन हम इसके बारे में सब मिलकर के सुनेंगे कि कहानी
0: ये तो हुई आज के पिटारे में हमारे क्या था इसकी बात, तो कहानी सुनेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लेना बड़ा जरूरी है।
1: चलिए

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका पहला भाग।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी
2: कथा सुधा। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय।

0: सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए हैं नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा। फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है? मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है।
1: 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे।
0: अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपए मैं दे ही दूंगा, यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं।
1: मनोहर, तुम सच ही आ गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे?
0: अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा।
1: अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे?
0: अब एक सप्ताह में दे दूंगा।
1: अच्छा, स्वीकार है, एक सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे।
0: अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं। इतनी, बस इतनी प्रार्थना है आपसे।
1: खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ,
2: मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है, वो संसार में अकेला है। गांव में दो एक दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहां अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है, दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। एक वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को एक सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा, वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है, मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है, इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदायी प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला,
0: यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था, मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था।

0: पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है, इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है, हां काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है।
1: उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा,
2: चाचा किससे बात करते हो, यहां तो कोई है भी नहीं।
0: क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं। तुझे तो बेटा मालूम ही है कि परसाल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं। वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते, मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं।
2: चाचा जाने भी दो।
0: पर बेटा समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं। जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा 100 बात की एक बात तो ये है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। चल चलाव लग रहा है, मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं, ये भी एक लड़ाई ही है। अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं।
2: चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है। पेड़ कटवाने को कहते हैं काट लेने देना, इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है, पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं।
0: अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियां खाई हैं, इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है। दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती।
2: चाचा बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं।

0: नहीं सकता।
1: बेटा ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं, क्या करूं बेटा तेजा? सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था, खाता था, ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा।
2: बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था।
3: चाचा, बापू से ये हाल कहा है?
1: सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और दो दो तीन तीन दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है।
3: कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है?
1: 25 रुपए देने पड़ेंगे।
3: 25 रुपए तो बहुत है चाचा।
1: पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे।
3: 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता।
1: अरे बेटा, भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर, देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा।
4: अशिक्षित कार हृदय, अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।
5: जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा, और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है।
6: बिल्कुल।
5: तो हमारे श्रोताओं के मन में भी ये उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए।
6: चलिए।

हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है, और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: तो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज है दीपा।
1: यही बात हम कर रहे थे श्रोता, अभी हम दोनों से क्या यहाँ बैठे कि अगर जीवन में भरोसा ना होना, या यूं कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना
0: हाँ,
1: तो ये अगला जो एक घंटा जो साथ हम रहते हैं और आप सबके साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें, हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों।
0: और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे और वाकई बहुत अच्छे बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और दीपक बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं, लेकिन परिस्थिति

0: परिस्थितियां कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार भी पड़ जाती है, और कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस भरोसे को पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से निभाए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल यही। और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुंचे, तो ये एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है चंचल, कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और सभी रिश्ते, फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो, उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
0: हाँ।
1: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार।
0: ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर या व्यवसायिक तौर पर, दोनों ही स्तरों पर अगर इसे हम देखें तो शब्द से ज्यादा जोर शायद ही किसी और बात पर दिया जाता होगा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी का भरोसा नहीं जीत पाता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता। और उसके करियर की बात करें या निजी जिंदगी, तो उनमें भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से।
0: हाँ।
1: हाँ। और किसी पर भरोसा किस तरह किया जा सकता है, तो कोई इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी शायद ना मिले, लेकिन इसके जवाब में ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
0: ये तो बात सही
1: है। बल्कि कई बार तो किसी के साथ काफी समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता,
0: और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीजें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है। कस्में खाना, रस्में निभाना, ये वो चीजें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब, कहाँ, कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे, और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया। ये बातें बहुत मायने रखती
1: हैं। बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि दो जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए?
0: हाँ।
1: ऐसा नहीं होता है ना?
0: बिल्कुल नहीं होता।
1: क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं, शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हैं।
0: बहुत सही बात कही
1: है ना। या फिर उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा।
0: हाँ।
1: इसलिए जब आपस के जो दो लोग के बीच में संबंध, चाहे कोई भी हो, उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है वो होता है क्या?
0: भरोसा, यानी विश्वास। हाँ, बहुत सही बात है।
1: और जिसकी देखभाल करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
0: दीपा बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये जरूरी नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना, वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दांव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा या माफी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं होता।
1: जी।
0: क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का, बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुंचाते हैं तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं वो रिश्ते को तोड़ देते हैं। इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें।
0: बिल्कुल। कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जब हम बहुत ज्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये भी वजह बन जाता है।
1: और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना।
0: तो बिल्कुल हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे, तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे।
1: और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
0: हाँ।

0: भाई श्रोताओं का भरोसे पर जो उन्होंने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले हैं। हमारे श्रोता का लिखना है कि भरोसा रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अपने शब्दों को निभाएं, सच बोलें और मुश्किल समय में साथ दें। याद रखिए, भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है,
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है, यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं।
0: और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो बाकी दुख पहुंचता है।
1: और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है।
0: और उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद, मैं तो कहूं कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम कि ऐसी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए, तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो हमें वो बहुत भरोसेमंद समय पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसा।

0: भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है।
1: क्या बात है, चलिए भी गीत सुन ले।
0: चलिए।
2: ए डम डम।

0: हम बात कर रहे थे चंचल
1: भरोसे की,
0: भरोसे की। और बहुत सारे संदेश आए हैं आगे, उसमें ये लिखा है एक हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
1: क्या बात है।
0: और एक और संदेश कुछ इसी शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखेरते हैं।
1: बहुत कहते ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए, लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनकर हत्या लेता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ, पर ये बात किसी को बताना मत। लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत

0: अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
0: इसी तरह से एक और संदेश है, इसने हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं एक घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा, पर ना तो वो आया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए।
1: तो ये जरूर बताइएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या ही बात है।
0: और बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर यह भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने वाले नुकसान है, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो
1: बिल्कुल, और बहुत सारे संदेश आए हैं बिजली को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश कि बिजली में बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसी एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीजों को अलग छोड़ करके ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं कहीं आग के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारी ये श्रोता कहती है कि सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है, ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें। यदि टूटे हुए तार आपके घर के नजदीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें यानी बंद कर दें। और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्टे वायर से उनको बांध के ना बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए इसका ख्याल रखें, बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें, कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफर ना करें।
0: और घर में जो अर्थिंग के तार होते हैं कई बार देखते हैं हम तीन तार होते हैं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: नेगेटिव पॉजिटिव और एक अर्थिंग का तार होता है, तो अर्थिंग का तार जरूर होना चाहिए आपके घर में और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली जमीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें, गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं, रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें, जलभराव वाले रास्तों पर ना चलें क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: और हमारे बहुत श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं जिसमें सरसों का साग बनाने की विधि है। तो इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार बताई गई है। हरी भाजियां, सरसों का साग एक गड्डी, पालक एक गड्डी, बथुआ एक गड्डी, मेथी एक गड्डी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। और अन्य सब्जियां भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियां लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3 और परोसने के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है?
1: सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3 सीटी ले लें मध्यम आंच पर। और कुकर का जब प्रेशर खत्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी की मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें, इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं, बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमी आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए।
0: जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है। उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है और इसे थपथपाकर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है तो अब अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा आसान
1: हो जाता है। और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है।
0: और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है,
1: बिल्कुल
0: उन्हें कुलचे कहा जाता है जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और अब चलते चलते एक गाने की झलक सुन लेते हैं।

0: हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह है।
2: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
1: जी।
2: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने

0: आपने मुझे सब बताया। मैं सोच भी नहीं सकता, ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है,
1: जी
0: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
1: जी
0: देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या बात है
0: शुक्रिया
1: सर
0: एक बार
1: जी।
0: और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
0: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था,
1: ओके
0: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली,
1: हाँ
0: और मैंने बीएससी भी लिया था। और 2 साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी।
1: ओके
0: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
1: बिल्कुल
0: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूं पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: एनवायरमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता।
1: जी
0: पहले
1: जी
0: साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको 1 साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग, और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है, क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में, आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए, खुद की
1: जी
0: प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूं अभी तक इसके अंदर।
1: जी ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
0: ऑफ्थेल जो टिपिकल टर्म है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है,
1: जी
0: ऑफ्थेल यानी आई, तो आई सर्जन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है।
1: जी इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
0: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 5 7 8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: जिसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविजन तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था, प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम है, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा, पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है, इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने, तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
0: जी
1: हैं?
0: जी
1: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है?
0: ड्राइनेस रूप है, इसका एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान दे के देखते हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है, जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठे और काम करते रहें, तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक

0: होल बंद होनी है वो कम हो जाती है और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूं कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आंख, एक मिनट के लिए आंख बंद कीजिए,
1: कहीं दूर देखिए। बताया
0: 20-20-20 फॉर्मूला है
1: जी,
0: कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा लेकिन एक जनरल है कि आप एक घंटे में एक टाइम तो एक दो मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफकोर्स अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता है।
0: और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो एलईडी है, पहले एलसीडी थे
1: जी,
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक एलसीडी स्क्रीन्स थे, अभी एलईडी स्क्रीन्स आए हैं और एलईडी स्क्रीन्स जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो ज्यादा चमकीली होती है,
0: ज्यादा चमकीली रहती है तो सब जो ब्राइटनेस रहता है तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है
1: जी।

0: आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरदर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि

0: अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है। अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है। जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है। तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले, लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो थक जाते हैं। और वो थकने के बाद फिर वो सरदर्द देने चालू होते हैं। सो सरदर्द भी एक है। और हमारे पास पेशेंट, आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सरदर्द के लिए।
1: अच्छा।
0: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है। हम अभी काफी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं कंप्यूटर्स के लिए भी,
1: जी,
0: बच्चों
1: जी.
0: में भी देते हैं, जिससे आंख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं।
1: जी,
0: तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है। इरिटेशन आंख में, खुजली आते रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे, जिनको इसके वजह से तकलीफ है बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है? क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं।
1: ओके।
0: अब समझिए, जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, अब शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन
1: सस्टेन करना मुश्किल
0: होता है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक जाती
1: वो
0: है।
1: भी थक जाती है
0: जी।
1: क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना मुश्किल है, हमें ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं होगा।
0: नहीं होगा।
1: तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिरदर्द होता है, ये कुछ चीजें आई। एक चीज जो मैंने कुछ लोगों में देखी है, वो आंखों में कोई प्रेशर होता है, जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है।
0: नहीं नहीं आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है।
1: जी जी।
0: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है
1: जी,
0: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं। बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं।
1: जी जी।
0: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है। वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है। जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजली 80-120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12-18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम बीपी मेजर करते हैं, वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है, जिसको ग्लोकोमा कहते हैं।
1: जी जी।
0: ग्लोकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
1: अच्छा।
0: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है।
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं, उनका शेप साइज उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज वगैरह, उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में, ऐसे नहीं है, बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए, आपका आंख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
1: अच्छा अच्छा
0: क्योंकि उस बीमारी में, वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है।
1: जी जी।
0: ग्लोकोमा जो है, मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूं आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है, अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए, आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है।
1: ओ गॉड।
0: तो क्योंकि आंख का जो एक सिंपल चीज है, जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है।
1: ओके।
0: आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
1: सूख जाती है,
0: सूख जाती है और उसका

0: कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
1: तो रोशनी गई,
0: रोशनी गई।
1: एक उम्र के बाद
0: जी,
1: चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं
0: जी,
1: ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
0: अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराए।
1: उसका और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए?
0: साल में एक टाइम
1: जी,
0: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर आप, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये सेम चीज है,
1: कॉमन सेंस,
0: कॉमन सेंस है।
1: 40 हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए।
0: 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो आपको आनी ही है।
1: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं,
0: संभावना 50% है माता के साइड से या पिता के साइड से।
1: जी जी,
0: सेम डायबिटीज में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे ही नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहां पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता
1: जी।
0: हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहां से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहां से आ गया।
1: सही बात,
0: कई मामा मामी दादा दादी नाना नानी कहीं से भी आ सकते हैं,
1: पूरे फैमिली ट्री।
0: तो बीमारियां जो है वो जो जेनेटिकली आती है, हमको विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती है अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती है, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीजें में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने 1 साल उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक दो घंटे निकालिए। सिंपल,
1: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी
0: एक जांच
1: उम्र के बाद जरूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों का प्रेशर वगैरह
0: जी,
1: जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं
0: जी।
1: यहां एक दिलचस्प बात ये है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता है?
0: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा
1: जी।
0: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया
1: जी।
0: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे जनरेशन में तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूरी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शन आ गए हैं
1: जी जी।
0: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अब समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है
1: जी,
0: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए
1: जी।
0: अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को
1: जी,
0: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया चश्मे वाले की दुकान में कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है?
1: पेशेंट की, बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
0: एक बात मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछता हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है ये गलत है मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
1: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे।
0: एग्जैक्टली,
1: ये दे रहा है मैं लूं कि नहीं।
0: एग्जैक्टली, तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में भी वही है, आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं
1: जी,
0: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी वो वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
1: डॉक्टर नहीं है।
0: डॉक्टर नहीं है जी, ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है। हाँ, वो पैरामेडिकल कोर्स है, आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है, मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं

0: देते। आंख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है। चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है,
1: जी
0: लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए, तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहां पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मेरे हिसाब से तो आंख का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, वो परफेक्ट होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, ये सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं।
0: जी
1: ये जो है ये मुसीबत की जड़ है,
0: जी
1: इससे
0: जी जी
1: बचना चाहिए।
0: नहीं, टू ईच देयर ओन। हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफकोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता,
0: जी
1: और दूसरी तरह की भी जांच होती है। वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं,
0: हाँ,
1: वो बिठाया जाता है बहुत देर
0: देखिए,
1: तक।
0: ये एक साइंस है
1: जी
0: जो आंख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आप,
1: जी
0: और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना। ज्यादातर लोग आते थे, दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत जरूरी है कि आप काम क्या करते हैं, कोई भी हो। बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से
1: बिल्कुल
0: लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
1: नहीं
0: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए।
1: जी जी बिल्कुल
0: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का है, 50 साल पहले का कंसेप्ट है,
1: जी जी जी
0: लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम। हम
1: यस सर
0: चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं,
1: जी
0: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूं, घर पे करते क्या है? काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो यू नो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
1: जिम्मेदारियां होती हैं।
0: जिम्मेदारी और काम रहते हैं उनका भी, तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना। ऐसे
1: बिल्कुल
0: नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके
0: जरूर
1: बाद आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर,
1: चूंकि बातें आंखों की हो रही हैं, तो गाने भी आंखों के होने
0: अच्छा,
1: चाहिए। तो यहां गाना सुनते हैं,
0: ओके, जरूर,
1: है ना।
0: थैंक यू।
1: आंखों में क्या जी, फिल्म का नाम 9-2-11।
0: 9-2-11 बहुत बढ़िया।

0: हलचल।
1: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
2: बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफी आंख के प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी पकड़ रहे हैं, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है पेरेंट्स
1: जी,
2: में
1: जी। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

उसकी वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक सीधी चीज है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नजदीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके भाई, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नजदीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज्यादा नजदीक ले रहा है। ये दूसरी

0: चीज है टीवी के नजदीक जाना या तो बहुत नजदीक से लेके पढ़ना। तीसरी चीज है काफी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फर्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए। तो अगर दोनों आंख में नंबर का फर्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आंख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है। और अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है इस आंख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, तो आंख बाहर निकल जाती है। आपने दोनों देखा रहेगा बच्चों में, एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए।
1: जी जी
0: तो ये जो है अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए, पैदाइशी कोई दिक्कत है?
0: पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है
1: जी
0: मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा या तो बच्चे की जो प्यूपल रहती है जो कि बीच की किकी रहती है उसमें कोई सफेदी वगैरह उनको दिखाई दे तो पता चले कि आंख में कोई जरूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए।
1: जी कई बार तिरछी आंखें होती हैं तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
0: वही कह रहा हूं, तिरछी आंखें जो है जिसको स्क्विंट कहते हैं जो आपको मैं कह रहा था,
1: जी
0: तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज्यादातर, कमजोरी की वजह से भी होती है, अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमजोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं। शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है, अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं, अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आंख को सीधी की जा सकती है
1: जी
0: जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना चाहिए और वो तमाम चीजें हैं, पर पोषण से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर है?
0: मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं,
1: जी
0: वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता है। एक नॉर्मल पोषण बहुत जरूरी है जो
1: जी
0: हम करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है जिसको
1: जी
0: संतुलित आहार कहते हैं।
1: बिल्कुल
0: आप कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जिसके अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है। अभी आपके लिए इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है।
1: जी
0: तो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है जो आजकल नहीं होता, और दूसरी बात है पानी पीना बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, सभी बाहर जाइए बंबई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको, तो पानी पीना बहुत जरूरी है, पानी के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा बढ़िया है आपका, उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है आजकल मैं देख रहा हूं क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल, आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे पीएचडीज आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और
1: विद्वान
0: सभी
1: लोग हैं।
0: बहुत ही हमसे बड़े पीएचडी हैं सारे।
1: जी
0: अब बीच में ही मैंने कहां पे एक पोस्ट देखी थी जहां पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियां ऐसे रगड़ो तो आपके आंख का नंबर चले जाएगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा कि
1: ओके
0: डॉक्टर साहब अगर हम आपकी ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे मतलब कर लगे रहो, बोला कितना टाइम, मतलब लगे रहो आप ही आप मुझे आके बताओ तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आहार लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है, कि वेस्ट का ही जो है वही सही है।

0: यही डाइट सही है, जीएम डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है,
1: बिल्कुल
0: उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आपको और कोई डाइट की जरूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप ज्यादा कचौरी खाए, बड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए, जलेबी खाए, तकलीफ तो होनी, इंस्टेड ऑफ
1: बिल्कुल
0: हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है, आंखों पे इतना ज्यादा। हाँ, डायबिटिक्स में आप जो कहते हैं,
1: जी
0: जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: वो
1: उसके
0: तो
1: लिए अलग तरह की सावधानियां।
0: उसकी अलग तरह की सावधानी है।
1: जी डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
0: अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूं। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
1: कंफर्ट,
0: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक जरूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक
1: जी
0: चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहां से।
1: जी जी जी
0: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है, और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, तो
1: जी
0: पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। ऐसे
1: हाँ
0: नहीं है, एक बात और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, अब कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा, जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है।
1: बिल्कुल
0: दूसरी बात ऑल्सो, जैसे मैंने कहा, आजकल का एनवायरमेंट बहुत बड़ा काम करता है। और तीसरी बात है, आंख का नंबर आंख के शेज और शेप और साइज के ऊपर आता है, वो
1: जी
0: आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था, तो माँ बाप ने जाके वहां पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया, इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया?
1: हाँ बिल्कुल, तो
0: आप
1: फिर
0: समझे?
1: आप
0: तो
1: इसमें
0: ये
1: भी सवाल नहीं उठा सकते।
0: नहीं, सवाल नहीं, समझना जरूरी है, सवाल तो जरूर उठाइए।
1: जी जी
0: हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है, जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूं, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते।
1: ओके बिल्कुल बिल्कुल
0: सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं,
1: जी
0: और ये उल्टा साइंस है। जो आंख के नंबर कम पड़ रहा है, हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है, कोई भी इमेज हो,
1: वो क्लियर
0: वो
1: बनेगी।
0: क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए
1: बिल्कुल
0: शेप और साइज में। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम सब पढ़े हैं,
1: बिल्कुल
0: कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स। दोबारा देख
1: यस
0: लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है। और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा, मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल नंबर अलग चीज है, नजर अलग चीज है।
1: जी
0: जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है, मेरा ध्यान सिर्फ नजर पे है, नंबर पे नहीं है। समझ लीजिए, सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, सिर्फ अंधे जो है बेचारे, उनको नंबर नहीं है, हमको और आपको सबको नंबर है, इसलिए दिखा जाता है।
1: जी जी
0: ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम है आंख की,
1: जी जी जी
0: जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा।
1: बिल्कुल
0: उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है, पहले अगर दूर का नंबर हो, 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आंख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज आते हैं। ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं, इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफी टाइम होता है, माँ बाप बोलते हैं, आजकल बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग काफी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये मुझे 15 साल 20 साल पहले ज्यादा दिखाई देता था। अच्छा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है, बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो। मैं
1: बिल्कुल
0: तो ऑलवेज कह रहा हूं, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, सुबह लगाओगे, रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, दृष्टि।
1: बिल्कुल
0: अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
0: जी,
1: अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया है तो फौरन उसे चश्मा बनवाकर देना
0: और
1: चाहिए।
0: 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए,
1: जी
0: क्योंकि बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है,
1: जी
0: ये ग्रोथ,
1: जी
0: जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है।
1: जी
0: और जो भी नंबर हो, वो नंबर मत देखिए, आप बच्चे की नजर देखिए।
1: बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, एक चीज जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, बड़े नंबर वाले चश्मे लग जाते हैं
1: जी,
0: वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि चश्मा हटाया जा सकता है?
1: जी, तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है
0: जी।
1: काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है
0: जी,
1: उनके एक मिलीमीटर में तीन नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका माइनस थ्री है तो आपके जो लेंथ है आंख की वो एक मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक।

0: कि जब तक कि आंख का नंबर 2 साल तक स्टडी ना हो, लेजर या लेजिक करना सही नहीं है. सपोज कोई बच्चा आया हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20 18 की और उसके बाद उसके आंख का साइज चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, दोबारा तो नहीं कर सकते ना? क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गुलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गुलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गुलाई कम करनी है. तो हम वो कैसे कर सकते हैं, पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है.
1: अच्छा,
0: उसका एक कैलकुलेशन है और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूं 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स से, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है. तो एक सरल भाषा में ये लेजिक या लेजर है. दूसरी बात है, इसके लिए भी काफी जांच पड़ताल करना जरूरी है. उसके अंदर जैसे मैंने कहा 2 साल तक नंबर स्टडी रहना बहुत जरूरी है, एक बात. दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है.
1: अच्छा,
0: क्योंकि अगर आपका लेजर कर रहे हैं किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अगर सामने की कांच पतली हो
1: तो
0: और लेजर हो जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज है, आगे आंख की दृष्टि में परिणाम आ सकता है. आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो.
1: करेक्ट.
0: तो वो भी जांच करना जरूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं. ये सब चीजें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेजर के लिए कहते हैं. और उसके अंदर भी एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है. एक उम्र के साथ आपके आंख में बदलाव आएगा ही, 45 के बाद नजदीक का नंबर आएगा तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हो अगर 20 पे आपने करवा लिया तो.
1: जी,
0: लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे. काफी टाइम लेजर होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है. ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज की नहीं है, ये भी हमने देखा हुआ है. फिर चश्मा पहनना जरूरी होता है. कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज्यादा नंबर हो काफी कम हो जाता है लेकिन थोड़ा नंबर चलता है.
1: जी,
0: और जो भी उम्र के वजह से या कोई और कारणवश आंख की बीमारियां होनी है वो तो होनी है, भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज हो, वो तो आप लेजर से, हम बायोनिक आए तो नहीं बिठा रहे वहां पे.
1: जी जी,
0: आप जो है तो वही है.
1: बिल्कुल.
0: हाँ,
1: सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है,
0: उसका सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है.
1: जी,
0: उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए.
1: पर ये हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है.
0: जी नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता.
1: कई बार बुजुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं.
0: वो देखिए, अभी एक नई चीज आई है पिछले 7-8 साल में, जिनके बहुत ज्यादा नंबर है बुजुर्ग लोगों के, और ज्यादातर मोतिया होने के ऑपरेशंस किए जाते हैं.
1: जी जी.
0: लेकिन काफी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं, जिनको हम ट्राइफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं, वो ऑपरेट करके जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि जिसमें मोतिया नहीं है, लेकिन उसको निकाल के वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है.
1: जी जी.
0: तो वो परमानेंट रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर तक फिर बाद में वहां पे कुछ नहीं होता. लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है, उसके पहले काफी टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं.
1: जी,
0: पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत जरूरी है कि जब आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं. कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम तो हो सकता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: आप समझे कि नहीं, ये ऑपरेशन है.
1: जी.
0: तो आप अपनी तरफ से आप समझ के जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है.
1: बिल्कुल.
0: हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी के भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत जरूरी है. आप समझे कि अगर ये ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आंख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए. दैट इज माय बॉटम लाइन टू एवरीबॉडी. जब जरूरत हो तो जरूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए. काफी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर तो मैंने करवा लिया.
1: जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है.
0: हाँ, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है.
1: जी.
0: और हम कितनी भी कोशिश करें तो जैसे मैंने कहा, अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर

0: एक पेशेंट का आंख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आंख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें चार आना यहां वहां है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है।
1: बिल्कुल,
0: पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जानते हैं
1: जी,
0: बिकॉज इट इज नॉट, अनफॉर्चुनेटली इट इज इतनी स्पेशलाइज सिस्टम है आंख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, छोड़िए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: तो आंख तो, और आंख को तो सबसे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखाया

0: इम्पोर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखा गया ऐसे आंखों के थ्रू ही दिखेगा।
1: परफेक्ट बात है। यहां एक गाना सुनते हैं
0: जरूर,
1: और वो गाना है आंखों में हमने आपकी,
0: अरे वाह।

0: दोस्तों आज के सेहत
1: यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

एफएम 101 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। इस समय शाम के 5 बजे है, प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं आपकी युववाणी होस्ट पिंकी आ गई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर, जिसमें होगी आज की कुछ महत्वपूर्ण चर्चा और ढेर सारी जानकारी के साथ ही करवाएंगे आपका मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। दोस्तों, बरसात के मौसम में आज की कड़ी धूप हमें सिर्फ गर्मी का एहसास ही नहीं कराती, बल्कि यह हमें जीवन की चुनौतियों की भी याद दिलाती है। जैसे तेज धूप में बाहर निकलना आसान नहीं होता, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही भारत के महान वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों को झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा सिखाया कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें सत सत नमन करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी संबंध में हमारी चर्चा का विषय है डॉक्टर कलाम, आत्मनिर्भर और समर्थ भारत के शिल्पी के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आत्मनिर्भर और समर्थ भारत का शिल्पी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान, विज्ञान और दूरदर्शिता से भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, उनका मानना था कि भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इन क्षेत्रों में सबसे पहला क्षेत्र है विज्ञान और तकनीक, दूसरा क्षेत्र है शिक्षा और तीसरा क्षेत्र है कृषि और उद्योग। दोस्तों, उन्होंने विजन 2020 के माध्यम से एक विकसित और सशक्त भारत का सपना देखा। इसके अलावा वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और वे हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका प्रसिद्ध विचार था, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।

वे मानते थे कि युवा ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। यदि आज का युवा बड़े सपने देखे, मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े तो वही कल का सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। तो साथियों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उनकी पुण्यतिथि पर हम एक बार फिर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके महान विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। तो साथियों, चर्चा हम यूं ही बरकरार रखेंगे, पर उससे पहले वक्त हो गया है गीत संगीत का। तो आइए सुनते हैं बी प्राक की आवाज में फिल्म केसरी से कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
1: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
2: लग जा गले के फिर।
0: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: मेरी कल आए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 तक आकाशवाणी झांसी पर।
3: मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। उमंग।
4: ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे मैदान की जहां अलग अलग देशों के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ खेल रहे हो और हर जीत के साथ देश का झंडा गर्व से लहरा रहा हो। यही है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की असली पहचान। तो साथियों इसी संबंध में हमारी चर्चा का अगला विषय है राष्ट्रमंडल खेल 2026। राष्ट्रमंडल खेल 2026 एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह खेल प्रतियोगिता हर चार साल में आयोजित होती है। इसमें खेल भावना एकता और प्रतिस्पर्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। यह शहर इसके पहले भी सन 2014 में सफलतापूर्वक इन खेलों की मेजबानी कर चुका है। तो दोस्तों बात करते हैं इन खेलों के आयोजन के समय की। तो ये खेल 2026 में जुलाई और अगस्त के आसपास आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में कई प्रकार के खेल जैसे एथलेटिक्स, दौड़, कूद, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग, कुश्ती के अलावा अन्य खेल भी समय समय पर शामिल किए जाते हैं। भारत हर बार राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करता है। दोस्तों यह खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मंच है। यह देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देते हैं और खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे बड़े मंच के लिए तैयार करते हैं और हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल जीत में नहीं बल्कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और आत्मविश्वास में होती है। इसलिए सभी युवा अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाने, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें।

खेल का मैदान हो या जीवन का संघर्ष, जो पूरे जुनून से आगे बढ़ता है वही सच्ची जीत हासिल करता है। तो साथियों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। वक्त हो गया है एक बार फिर गीत संगीत का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जो लिया गया है फिल्म कृष्ण से।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रिश से कुणाल गांजावाला की आवाज में ये गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम योग वाणी में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसी प्रेरणा स्रोत के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये भारोत्तोलन खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारत के मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू है। इनका पूरा नाम सैखोम मीराबाई चानू है जिन्होंने 2026 में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों ये बचपन से ही खेलों में रुचि रखती थी, इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र से ही खेल में प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। परंतु मीराबाई चानू का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु कठिन मेहनत और अनुशासन के कारण वे जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगी। उन्होंने सन 2020 में टोक्यो ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद तो उन्हें सफलता हाथ लग गई और उन्होंने कई कॉमनवेल्थ गेम्स में कई गोल्ड मेडल जीते और विश्व चैंपियन में भी शानदार प्रदर्शन किया। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। दोस्तों इनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और कभी हार न माने तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हम सभी युवाओं के लिए उनसे यह सीखना जरूरी है कि सफलता अंत नहीं होती बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी असफलता से ना डरे बल्कि निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो साथियों आप सभी सफलता के लिए प्रयास करें। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। आज की तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है। ऐसे में योग एक ऐसी विधि है जो हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है बल्कि मानसिक और संतुलन भी प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है कि योग ही तनाव मुक्त जीवन की सच्ची कुंजी है। तो आइए दोस्तों इसी संबंध में चर्चा करते हैं तनाव मुक्त जीवन की कुंजी योग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर मन और आत्मा को संतुलित करती है, और आजकल हम सबकी समस्या तनाव को दूर करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इसमें शारीरिक आसन, श्वास प्रश्वास और ध्यान शामिल होते हैं जो हमें अंदर से शांत और मजबूत बनाते हैं और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। योग दोस्तों

विशेषतः सुबह सूर्योदय के समय सबसे अच्छा माना जाता है। यह न केवल हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि हमारे जीवन में शांति, संतुलन और खुशी भी लाता है। दोस्तों, यदि हम रोज थोड़ा समय योग को दें तो हम एक स्वस्थ, खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। साथियों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी योग के बारे में। वक्त हो गया है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का आखिरी गीत जो लिया गया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी खुशी कभी गम से अलका याग्निक, उदित नारायण, सुनिधि चौहान, अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाज में ये गीत। दोस्तों आज के समय में बढ़ता प्रदूषण हमारे जीवन के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसे में वृक्ष ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें शुद्ध हवा और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमें वृक्षों को धरती का भूषण कहा जाता है। इसी संबंध में हमारी चर्चा का अगला विषय है वृक्ष धरा का भूषण है दूर करते प्रदूषण है। दोस्तों वृक्ष धरा का भूषण है दूर करते प्रदूषण है यह एक बेहद लोकप्रिय नारा है जो हमें सिखाता है कि पेड़ न केवल हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं बल्कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए भी

सबसे जरूरी है। इसलिए बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो ही हमारा कल सुरक्षित है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को आज यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण मिल सके। तो साथियों, घड़ी की सुइयां हमें बिल्कुल भी और ठहरने की इजाजत नहीं दे रही है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमारा प्रोग्राम रोज शाम 5 बजे न्यूज ऑन AIR के माध्यम से सुन सकते हैं, और अपने सुझाव हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज @AKAASHWANIJHANSI के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी अपनी दोस्त पिंकी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत।

0: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को पल्लवी वर्मा का नमस्कार। बहनों, हर बार की तरह हम फिर हाजिर हैं लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें होती हैं ढेर सारी जानकारियां और गीत संगीत। तो चलिए जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको जानकारी देते हैं हमारे शरीर के एक अहम अंग लीवर की। लीवर हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे शरीर के हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, पाचन सुधारने और हमारी आंतरिक एनर्जी को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लीवर का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अपने खान पान में थोड़े से समझदारी भरे बदलाव करके इसे स्वस्थ और मजबूत बनाए रखें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी हमेशा घर पर ही साफ सुथरे तरीके से बनाया खाना ही खाएं, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अनाजों को शामिल करें, जिनसे भरपूर मात्रा में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर मिल सके। दूसरी अहम बात है, जिन चीजों से लीवर को नुकसान पहुंचता है, जैसे फास्ट फूड, अल्कोहल, इनमें से हम सभी को दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ओवर ईटिंग से बचें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करते रहें, क्योंकि यदि आपका लीवर ठीक नहीं रहेगा तो आपको कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उसी में से एक बीमारी है हेपेटाइटिस। इस बीमारी से बचाव, रोकथाम व उपचार को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हम हर वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आज इसी बीमारी की अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सुनवाते हैं यह भेंट वार्ता, जिसमें डॉक्टर राम प्रताप सिंह बुंदेला से बातचीत की है प्रत्यंचा जी ने।
1: श्रोताओं, किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारे शरीर में पेट एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है, जिसमें लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है जो यदि खराब होने की स्थिति में आता है तो इलाज के माध्यम से और उचित खान पान से उसको ठीक किया जा सकता है। इसी अंग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, साथ ही साथ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए मनाया जाता है।

0: आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह बुंदेला, जो पेट, लीवर एवं आंत के सीनियर विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हम आपसे जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है और यह कितने प्रकार का होता है।
1: देखिए, बेसिकली हेपेटाइटिस लिवर का इन्फेक्शन है जो कि जनरली वायरस के कारण होता है। ये कई प्रकार का होता है, लेकिन जो हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, इस तरह के वायरस का हम लोग देखते हैं, जो कॉमनली हमारे पास मरीज आते हैं।
0: जी, तो ये तो बात हुई उनके प्रकारों की। डॉक्टर साहब, इनको क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है?
1: ये देखिए, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि जैसे कि ब्लैक वायरस हो गया है, जो जनरली हेपेटाइटिस बी को जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली ये गांव में जनरली पीलिया के नाम से प्रचलित होता है कि पीलिया हो गया है। तो ये पीलिया जो होता है बेसिकली हेपेटाइटिस के कारण ही होता है।
0: जी, तो इसका जो हर एक काइंड होता है, हर एक प्रकार होता है, क्या वो उतना ही खतरनाक होता है?
1: देखिए, हेपेटाइटिस ए, ई जनरली ये बेनाइन डिसीज होती है, हेपेटाइट, क्योंकि इनसे जनरली लिवर सिरोसिस नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं, इन वायरस से जनरली लिवर सिरोसिस होता है, जो कई बार लिवर फेल हो जाता है। तो उसमें कई बार मरीज दवाइयों से भी निकलते हैं, कई बार इसमें लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है, यदि लिवर बहुत अगली स्टेज में खराब होता है। तो हेपेटाइटिस ए कई बार बच्चों में फल्मेंट तरीके से प्रेजेंट होता है, उसमें भी कई बार लिवर फेल होने के चांसेस रहते हैं, उसमें भी कई बार बहुत सीरियसिटी आती है।
0: जी,
1: कोई भी हेपेटाइटिस जनरली यदि टाइमली आप मैनेज कर रहे हैं, टाइमली मतलब कि आप पेशेंट यदि जॉन्डिस है, उल्टी हो रही, बुखार आ रहा है, तो कंसर्न डॉक्टर को जाके दिखाए। उसमें जनरली लोग क्या करते हैं कि उसमें जैसे पीलिया होता है तो कहते हैं हम झाड़ फूक करवाएंगे, या फिर उसमें खुद सेल्फ मेडिकेट करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने ये चूरन ले लिया या ये कुछ ले लिया, इससे पीलिया सही हो जाता है। तो मुझे लगता है जब भी कभी पीलिया है, कभी भी बुखार आ रहा है, तो आप पीलिया के विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें और उसका उचित उपचार करें, ताकि टाइमली आप उसका मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप एक बार पेशेंट का पीलिया खराब हो जाता है या उसमें मरीज का बेहोशी है या ब्लीडिंग हो रही है, उस स्थिति में बहुत एडवांस स्टेज होती है, उस स्थिति में मैनेज करना बड़ा टफ होता है। तो जब भी कभी पीलिया आ रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसको हल्के में ना लें, क्योंकि यही पीलिया आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बुंदेलखंड में रहते हैं और बुंदेलखंड में थोड़ा सा इन प्रथाओं का प्रचलन भी है कि झाड़ने से ठीक हो जाता है या झाड़ फूक के माध्यम से या कोई देसी दवाइयों पे लोग विश्वास करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, पीलिया जो होता है 90% पीलिया सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से आ जाता है। यदि आप सिंपल कुछ दवाइयां लें, आपको उल्टी नहीं हो रही है, आप ओपीडी बेसिस पे दिखाएं, आपका पीलिया सेल्फ ही अच्छा हो जाता है। उसमें यदि 90% पेशेंट कहते हैं कि रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, वही मरीज यदि झड़वाते हैं तो बाद में कहते हैं कि हमारे झाड़ने से पीलिया सही हो गया, ठीक है ना। और 10% सीबीटी में जाते हैं, उन पेशेंट को कई बार वो सीरियस हो जाते हैं। तो देखिए, कोई भी मरीज पीलिया का होता, झाड़ने फूकने ये सिर्फ एक प्रथा है जिसका कोई भी पीलिया से लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि 90% पेशेंट सेल्फ रिकवर हो जाते हैं, 10% में कई बार सीवियरिटी जाती है, तो आपको उचित इलाज कराना है। तो यदि वो 10% सीरियस होते हैं, तो झड़ने फूकने वालों का कहना होता है कि ये टाइम से नहीं झड़वाया इन्होंने। तो देखिए, कभी भी पीलिया है, आप किसी भी नॉसेंस, किसी भी प्रथा में ना पड़े, आप डॉक्टर को दिखाएं, टाइमली इलाज कराएं। और उसमें ये भी नहीं है, कई लोग कहते हैं कि पीला खाने से पीलिया बढ़ जाता है या हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना है, इस तरह की चीजों से बचें। क्योंकि बेसिकली हम लोग फैट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इनिशियल पार्ट में, क्योंकि फैट वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पीला खाने से पीलिया बढ़ता है, कि हल्दी नहीं देना है, कि ये नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा है कई बार क्या होता है पेरीफेरी में कि लोगों से कह देते हैं कि आपको 4 दिन कुछ नहीं खाना है। अब यदि आप नहीं खा रहे हैं तो ऑलरेडी लिवर के मरीज कंप्रोमाइज, जब आप खा नहीं रहे हैं तो इस स्थिति में और सीरियस होने की संभावना रहती है। तो घर का कोई भी खाना हो, उसको आपको खाना है, बस आप कोशिश करें कि घर का ही खाएं, क्योंकि जो भी स्ट्रीट फूड होते हैं, जो स्ट्रीट फूड मिलते हैं, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो आप स्ट्रीट फूड ना लें, बस आप बेसिक घर का खाना खाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल पार्ट में यदि वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप फैट को आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आप सब चीजें लें, कोई दिक्कत नहीं है।
0: जी, पूरी मिला के बात यह है कि हमें केवल घर का खाना खाना है और शुद्ध खाना खाना है।
1: उसमें आप आराम से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: जी, इसमें नॉन वेजिटेरियन भी जोड़ सकते हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो।
1: देखिए, इनिशियल पार्ट में मैंने आपसे बोला कि वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहती है, तो वॉमिटिंग की, क्योंकि जो भी नॉन वेजिटेरियन से फैट ज्यादा होता है, तो फैट के कारण वॉमिटिंग हो सकती है। यदि आप वॉमिटिंग आपको नहीं हो रही है, तो आप नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन कुछ भी ले सकते हैं।
0: ठीक, अब बात करते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि ये जो हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो फैलती कैसे है, और जैसे लोग

0: अक्सर भ्रांतियां होती है। एक भ्रांति और होती है कि किसी चीज का कोई मरीज है, उसको हमें छूना नहीं है, उसके पास हमें बैठना नहीं है। तो इन बातों को किस तरह से दरकिनार कर मरीज का इलाज किया जा सकता है?
1: देखिए, दो तरीके से हेपेटाइटिस फैलता है। बेसिकली एक तो होता है वाटर बॉर्न, जो कि आपके जैसे पानी इन सबसे फैलता है, वो जैसे हेपेटाइटिस ए या ई है। तो जो ये जो वायरस होते हैं, बारिश के सीजन में यदि पानी आपका अशुद्ध है तो उससे फैलने के चांसेस रहते हैं, तो एक चीज। सेकंड होता है हेपेटाइटिस बी सी। तो हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं आपके इन्फेक्टेड सिरिंज से होते हैं या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होते हैं। तो यदि हेपेटाइटिस बी किसी को भी है तो उसका बेसिकली आप जब भी जो पेरीफेरी में पहले जो सिरिंज जो यूज सिरिंज लगाते थे, एक मरीज की दूसरे को लगा देते थे, तो उससे हेपेटाइटिस बी और सी के चांसेस रहते थे। अब ये भी हमें लगता है कि अब कम हो गया है। मरीज को भी चाहिए कि जब भी कभी किसी क्लिनिक पे कहीं भी जाएं तो ये ध्यान रखें कि जो सिरिंज आपकी है वो किसी दूसरे को तो नहीं लगाई गई है, तो आप न्यू सिरिंज यूज करें। सेकेंड थिंग क्या है, यदि हेपेटाइटिस बी किसी के फैमिली में है, खासकर यदि हस्बैंड को है, तो वाइफ को भी हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराना है ताकि आप उसको टाइमली इलाज कर लें, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के चांसेस कम रहते हैं। थर्ड चीज कि हेपेटाइटिस जो आपका हेपेटाइटिस बी सी है, यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसका टाइमली आप कहते हैं उसका टेस्ट कराइए। यदि वो पॉजिटिव है तो उसको आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको उसको इलाज करना है ताकि कि बच्चे को ट्रांसमिट ना हो। तो ये ख्याल बेसिकली आपको रखना है
0: जी। ये जेनेटिक भी फैलता है क्या ये रोग?
1: जेनेटिक, देखिए जेनेटिक का मतलब ये होता है कि बच्चे के लिए मां से ट्रांसमिशन होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल जब भी कभी आपके फॉलोअप में आ रही है तो आप उसका हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी कराइए। यदि वो पॉजिटिव आ रही है तो यदि पॉजिटिव के साथ आप उसका फर्दर वर्कअप करिए और उसमें मां को यदि ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप उसको इलाज करिए ताकि बच्चे में ट्रांसमिशन कम हो। यदि मां को ट्रीटमेंट होता है तो 90-97% चांस ये होते हैं कि बच्चे में ट्रांसमिट ही ना हो। सेकेंड थिंग, यदि बच्चा आपका पैदा हो रहा है तो आपको इनिशियल 12 आवर के अंदर, 12 घंटे के अंदर आपको उसको हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना है, और महंगा इम्यूनोग्लोबुलिन आता है 0.5 ml का, तो आपको तुरंत लगवाना है। तो आप डिलीवरी भी हेपेटाइटिस बी मरीज वहां कराए जहां सारी सुविधाएं अवेलेबल हों। तो पहले से इंश्योर कर ले कि इस हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, आप वहां पर जाकर डिलीवरी कराएं ताकि बच्चे को टाइमली लग जाए। तो इस तरह से आप ट्रांसमिशन अराउंड 95% रोक सकते हैं। अदरवाइज बच्चे को यदि टाइमली नहीं कर रहे तो बच्चे में ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं।
0: जी, हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती यदि लक्षण किसी मरीज को दिखाई देते हैं तो वो किस तरह से उसको पता चले कि मुझे हेपेटाइटिस हो चुका है और मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है?
1: देखिए, शुरुआत तो ऐसे होती है, यदि कोई पेशेंट को बुखार आ रहा है और रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है, आप उस लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं। यदि वो बड़े हुए हैं तो ये जनरली हेपेटाइटिस के कारण होते हैं। तो यदि बहुत ज्यादा आपके लिवर फंक्शन टेस्ट दे रहे हजारों में आ रहे हैं, आप उसका हेपेटाइटिस का वर्कअप कराइए। वर्कअप कराते हैं तो उसमें SGOT-PT या आपके LFT बड़े हुए हैं तो उसमें हम टेस्ट करते हैं कि हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस ए है, आई है। तो इस तरह से शुरुआती लक्षण के बेसिस पे हम हेपेटाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं।
0: जी, हेपेटाइटिस से डॉक्टर साहब सबसे जो मुख्य अंग है वो कौन सा प्रभावित होता है? और
1: देखिए, हेपेटाइटिस से बेसिकली तो लिवर ही इन्वॉल्व होता है। यदि और बाकी अंग का, यदि बहुत सीवियरिटी में डिसीज जा रही है, यदि एक्यूट लिवर फेलियर में कोई पेशेंट जा रहा है तो बाकी अंग के इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज लिवर मेनली अफेक्टेड होता है हेपेटाइटिस बी से, हेपेटाइटिस ए से, ई से, बेसिक अंग तो आपका लिवर ही इन्वॉल्व होता है।
0: जी, तो पीलिया और हेपेटाइटिस का क्या संबंध है?
1: देखिए, हेपेटाइटिस के कारण पीलिया होता है। अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी हेपेटाइटिस वायरस है, आपका हेपेटाइटिस है, तो वो बेसिकली पीलिया करता है लिवर के अंदर।
0: जी, फिर वो लीवर की खराबी शुरू करता है,
1: वो करता है। उसमें भी बेसिकली हमने आपको बताया कि जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है ये क्रोनिक लिवर डिसीज करता है, जिसे CLD कहते हैं, क्रोनिक लिवर डिसीज कहते हैं। तो इनकी क्रोनिसिटी में जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ए ई होते हैं जो, वो जनरली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करते हैं जो रिजोल्व हो जाते हैं। उसमें भी जो हेपेटाइटिस ए होता है उसमें फल्मिनेंट यानी लिवर फेलियर के चांसेस 5-10% होते हैं, वही सेम हेपेटाइटिस ई होता है उसके भी चांसेस रहते हैं। लेकिन ये जनरली वायरस क्रोनिक लिवर डिसीज नहीं करते हैं। और जनरली प्रेग्नेंट फीमेल में हम ये कहते हैं कि यदि उसमें LFT डिरेंज है तो हेपेटाइटिस ई जरूर कराना है, क्योंकि हेपेटाइटिस ई की फल्मिनेंसी वो प्रेग्नेंट फीमेल में ज्यादा होती है।
0: आजकल डॉक्टर साहब जैसे देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं, जंक फूड का जमाना है, बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऐसे में लीवर जो है वो पेरेंट्स क्या करें कि उनका लीवर बच्चों का शुरू से ठीक रहे, और कैसे कोई क्या तरीके अपनाए जाएं कि जो लीवर है हमारा वो चुस्त दुरुस्त बना रहे?
1: देखिए, बेसिक बात क्या है, जंक फूड सारे के सारे जो होते हैं इनमें फैट बहुत ज्यादा होता है। तो इनसे जो क्या होता है कि हेपेटाइटिस के अलावा आजकल एक कॉमन टर्म आ रहा है MASLD, मतलब मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसीज होती है। इसमें जो आपका यदि आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपका खाना बहुत खराब है, तो इससे फैटी लिवर, जो आप कॉमनली आजकल पढ़ रहे हैं कि फैटी लिवर डिसीज हो रही है, ये फैटी लिवर डिसीज भी आजकल एक तरह से एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि तेजी से फैल रही है। तो इसको बचने के लिए आपको बेसिकली खान पान प्रॉपर हो, आपका एक्सरसाइज प्रॉपर हो और आपकी हाई फाइबर डाइट हो, ये बहुत जरूरी है इसमें।

0: जी, तो ये जो हेपेटाइटिस की बीमारी है डॉक्टर साहब, इसका इलाज कितना संभव है?
1: देखिए, मैंने आपसे कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी यदि टाइम में डायग्नोस हो जा रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी यदि आपका एक्टिव स्थिति में है तो उसकी एंटीवायरल ड्रग्स आती हैं। हेपेटाइटिस सी जो आजकल बहुत अच्छी ड्रग्स आ गई हैं जिसमें हम 3 महीने में हेपेटाइटिस सी का इलाज करते हैं, तो उससे सब प्रोग्रेशन और लिवर फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं बेसिकली, तो ये डिजीजेस कंजर्वेटिवली मैनेज होती है। ये बेसिकली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस तरह प्रेजेंट करती है और टाइमली आप उसका मैनेज करते हैं तो इनमें चांसेस कम होते हैं कि फेल्यूर में जाए लिवर।
0: जी, जैसा कि आपने पहले बता दिया है कि नवजात शिशु यदि हो रहे हैं तो उनको 12 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस का टीका लगना चाहिए, और यदि मान लीजिए कि एक 40 वर्ष का कोई व्यक्ति है उसको टीका नहीं लगा अपने समय में, तो उसके लिए क्या उपाय
1: है? हेपेटाइटिस का टीका आप कभी भी लगा सकते हैं, ये रूल नहीं है कि आप कब लगाना है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने हेपेटाइटिस के टीके नहीं लगवाए वो आज चाहता है तो हेपेटाइटिस बी की टीके आज शुरू कर सकता है। उसमें बेसिकली 3 टीके लगते हैं, एक आज लगे, फिर 1 महीने पे लगे, फिर 6 महीने पे लगे। यदि कोई बच्चा है, बच्चे को तो जनरली आजकल जो आपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट ने ऐड कर रखा है, ठीक है ना, तो उसमें आप कहते हैं कि उसके तो हो ही जाते हैं। बाय द वे, कोई मिस भी कर रहा है तो आप वही 0.16 का डोज हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए 0 और 6 का होता है, एक लगवा लें फिर 6 मंथ पे लगवा लें दो डोज। देखिए, आप हेपेटाइटिस बी में कोई बूस्टर का कोई रूल नहीं है। आपने यदि हेपेटाइटिस बी एक बार लगवा लिया है तो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है। यदि बाय द वे आपको लगता है कि आपको इम्यूनिटी नहीं है तो आप हेपेटाइटिस बी का एंटीएचबीएस टाइटर करा सकते हैं। यदि वो आपका ठीक आ रहा है तो बार बार हेपेटाइटिस बी के टीके की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: जी, और यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए हेपेटाइटिस बीमारी से ग्रसित है और फिर वो चाहे कि अब मैं टीका लगवा लूं, तो क्या क्यूरेबल है ऐसा?
1: देखिए, हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है तो उसको हेपेटाइटिस बी के टीके की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। लेकिन हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के लिए आपको हेपेटाइटिस जैसे ए का टीका लगवाना है तो डेफिनेटली आपको लगवाना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का मरीज यदि ऑलरेडी है और उसको सुपर इम्पोज हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन होता है तो इस तरह की बीमारी में एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेल्यूर कहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट पे बड़े सिक हो जाते हैं, तो इसलिए आपको हेपेटाइटिस बी के मरीज को, चाहे आप वो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है या हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, आपको लगवाना ही लगवाना है।
0: जी, ये सबसे ज्यादा किन लोगों में ये रोग देखने को मिलता है आजकल?
1: देखिए, हेपेटाइटिस बी तो मैंने आपको बी और सी का तो ऑलरेडी बताया कि ब्लड बॉर्न डिसीज होती है। इसमें जैसे हेपेटाइटिस सी है, आपने देखा कि पंजाब स्टेट में बहुत कॉमनली हेपेटाइटिस सी कॉमन है क्योंकि ड्रग एब्यूज बहुत कॉमन है। उसी ड्रग एब्यूज उसी सिरिंज से वो बार बार यूज कर सकते हैं, तो ड्रग एब्यूजर में हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन होता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है क्योंकि बेसिकली ये ब्लड ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ठीक है ना। तो ये हेपेटाइटिस बी सी ब्लड से फैलते हैं। बाकी ये जो आपके हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं ये फिकोरल रूट से होते हैं। तो ये बेसिकली प्रिकॉशन आपको यही लेना है कि सिरिंज मल्टीपल टाइम यूज ना करें, एक दूसरे की यूज ना करें, ठीक है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, आप कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी का स्टेटस आपको पता हो, यदि आपका आपको हस्बैंड या वाइफ में कोई भी पॉजिटिव है उसका आपको टीकाकरण करना है। वो टीकाकरण के बाद यदि उसका टाइटर अच्छा हो जाता है तो सेफ हो रहता है। मतलब उसमें
0: इस रोग की रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
1: रोकथाम के लिए वही मैंने आपसे बोला कि जो हेपेटाइटिस ए ई जो वाटरबॉर्न डिसीज है उसमें आपका साफ सुथरा एनवायरमेंट हो। हेपेटाइटिस बी सी है, यदि आपको टाइमली पता चल जा रहा है तो आप उसमें कहते हैं कि एक तो सिरिंज रीयूज ना हो, दूसरी आपका कहते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं प्रॉपर अच्छे ब्लड बैंक जो हो उनसे जिसमें टेस्टेड ब्लड हो वो चढ़वाएं आप, ठीक है ना। और यदि आपको पॉजिटिव हो गया है तो आप टाइमली उसका इन्वेस्टिगेशन करें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। उसमें ये नहीं है कि आप कहें कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है आप उसे कैजुअली नहीं ले सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी सी है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप उसका टाइमली करें ताकि आप लिवर को खराब होने से बचा सकते हैं। तो यही आप इसका बेसिकली मतलब प्रॉपर डायग्नोस हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो।
0: जी, जैसा कि बुंदेलखंड में कुछ महिलाएं भी हैं जैसे हमारे देखने में आता है कि मादक पदार्थों का कुछ सेवन करती हैं, तो उससे भी क्या लीवर खराब होने की स्थिति बनती है?
1: देखिए, लिवर में यदि आप एल्कोहल ले रहे हैं, आप हार्मफुल लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली कहते हैं कि उसमें लिवर सिरोसिस के चांसेस रहते हैं। तो कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि आप टॉक्सिक लाइक एल्कोहल ले रहे हैं, आप उसका फीमेल्स में खासकर आप 20 ग्राम से ज्यादा ले रहे हैं पर डे, तो ठीक है आपको लिवर सिरोसिस के चांसेस रहते हैं क्योंकि लिवर तो बेसिकली अफेक्टेड एल्कोहल से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही अफेक्टेड होते हैं यदि आप डेंजरस अमाउंट से ज्यादा ले रहे हैं।
0: जी, रोजमर्रा की ऐसी कौन सी आदतें हम अपना सकते हैं कि जिससे हमारा जो लीवर है वो स्वस्थ रहे?
1: देखिए, आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं, आप कहते हैं प्रॉपर खाना ले रहे हैं, हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं, फैटी मील कम ले रहे हैं, तो ये आपके लिवर को हमेशा हेल्दी रखेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आपके पैक्ड फूड है, आप कहते हैं कि आपके पिज्जा बर्गर ये सब है, तो इन सब चीजों से आपका वेट बढ़ता है और वेट के कारण भी आपका फैटी लिवर डिसीज होता है, फैटी लिवर से आपका लिवर खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, ये सारी बड़ी जरूरी चीज।

0: तो वेट कंट्रोल, प्रॉपर फूडिंग, ये बड़ी जरूरी है बच्चों में, खासकर आप आजकल जो मोबाइल कल्चर है, तो
1: जी
0: बच्चे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मोबाइल देख रहे हैं, साथ में पिज्जा बर्गर खा रहे हैं,
1: जी
0: तो ये आपको मोबाइल से बच्चों को हमेशा दूर रखना है और खाना प्रॉपर होना चाहिए। जैसे
1: जी
0: मेरी लैंग्वेज में तो हम यही कहते हैं कि मोबाइल जस्ट लाइक गन,
1: गन
0: यदि आप गन किसी को दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको कोई कोई किसी ना किसी को शूट करेगा ही करेगा।
1: जी बिल्कुल
0: तो वही आप मोबाइल बच्चों से दूर रखें, बच्चों को प्रॉपर फूडिंग हो, बच्चों को आप यदि आपको जैसे आप पिज्जा बर्गर देना भी है तो आप कहते हैं उनका या आप 15 डेज में आप उन कर सकते कि हम बेटा खिला सकते हैं, लेकिन आप हर दिन यदि आप ऑर्डर कर रहे हैं इस कल्चर में जिसमें आपके घर में ही आजकल हर फूड अवेलेबल और आप फोन करते हैं तो फूड आ जाता है,
1: जी
0: तो इस तरह की आपको कल्चर से बचना होगा और बच्चों को आप आउटडोर एक्टिविटी इनमें थोड़ा सा प्रमोट करें।
1: जी साथ ही साथ आपसे ये एक सवाल और पूछेंगे कि सरकार की कोई ऐसी योजनाएं हैं या कोई ऐसा मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम है जिनमें लोग भाग ले सकते हैं?
0: देखिए सरकार ने तो हर चीज अवेलेबल कर रखी है, सरकार ने आपको बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रॉपर उन्होंने अरेंज कर रखा है। आप कहते हैं कि एडल्ट भी है, आप यदि मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में जाते हैं तो वहां पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो आप प्रॉपर वैक्सीन के लिए जा सकते हैं और वैक्सीन हर एक को कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, लेकिन चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और क्या खास सलाह देना चाहेंगे लीवर से संबंधित और हेपेटाइटिस की बीमारी से संबंधित?
0: देखिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूं कि लिवर बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, उसके बहुत सारे फंक्शन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, आप लिवर को प्रोटेक्ट करके रखें। आप कहते हैं कोई भी वायरस की बीमारी है आपको, हेपेटाइटिस बी सी है, उसका प्रॉपर इलाज कराएं, आप साफ सुथरा खाना खाएं। आजकल की दुनिया में खाने पीने से भी लिवर सिरोसिस, इस समय जो आपका फैटी लिवर डिसीज है वो बहुत बड़ा एपिडेमिक है। आप फैटी लिवर डिसीज को प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर फूडिंग के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लिवर की जो भी लिवर से संबंधित बीमारियां हैं उसका प्रॉपर इलाज कराएं। थैंक यू वेरी मच
1: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमको, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर।
0: नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार।
2: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
3: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
4: लग जागने के फिर
2: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी कल लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: श्रोता बहनों, हम महिलाओं को अपनी खुद की सुरक्षा व सम्मान के लिए खड़ा होना आना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर या आपातकालीन स्थिति में हम खुद मदद प्राप्त कर सकें। इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर हैं जिनकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए ताकि एक कॉल करने पर बिल्कुल निशुल्क मदद प्राप्त हो सके। बस हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि कॉल कौन से नंबर पर करना है। चलिए आज हम आपको बताते हैं। पहला नंबर है 1090 यानी 1090। यह महिला पावर हेल्पलाइन का नंबर है। किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न होने, स्टॉकिंग या किसी भी प्रकार की डिजिटल या शारीरिक प्रताड़ना के खिलाफ आप इस नंबर पर कॉल लगाकर मदद प्राप्त कर सकती हैं। फिर है 181, यह हेल्पलाइन नंबर है। इस पर कॉल करके आप घरेलू हिंसा, संकट या सहायता के लिए मदद प्राप्त कर सकती हैं या शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके बाद है 14490, यह नंबर है राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसमें आप शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ कानूनी मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकती हैं। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर बुलिंग आम बात हो गई है और यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद प्राप्त कर सकती हैं। तो श्रोता बहनों, उम्मीद है आपको ये जानकारी प्राप्त पसंद आई होगी।

0: इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता बहनों, आज के समय में बचत और निवेश किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए आर्थिक मजबूती प्राप्त करने के दो सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं, क्योंकि छोटी छोटी बचत हम सभी की आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा कवच का काम करती हैं और तुरंत सहायता भी प्रदान करती हैं। बचत करने से व्यक्ति को अपनी आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे जरूरत पड़ने पर गैर जरूरी कर्जों से बचा जा सकता है। ठीक ऐसे ही निवेश हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारी बचत को मजबूत बनाता है। मान लीजिए, यदि आपने अपनी बचत का पैसा कहीं में जमा किया तो उस पर आपको ब्याज मात्र ही मिलेगा, लेकिन इसी बचत राशि को यदि आप किसी निवेश के बेहतर विकल्प में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी बचत राशि को समय के साथ बढ़ाने का काम करता है, ताकि लंबे समय में एक बड़ी धनराशि तैयार हो जाए। इसलिए बचत हमारे वर्तमान को सुरक्षित रखती है और निवेश हमारे भविष्य को उज्जवल और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है, और ये दोनों ही हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार है। तो श्रोता बहनों, आप भी बचत कीजिए और निवेश कीजिए। इसी के साथ समय हो चला है गीत संगीत का, तो आइए मिलकर सुनते हैं इस गीत को, फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से।

नारी जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। इसी के साथ मुझे यानी पल्लवी वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोता बहनों, इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, अपने पत्रों द्वारा लिखकर जरूर बताइएगा। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान पंच भैयारो स्वीकारो संतोष पाल को नमस्कार। और किसान पंच भैयारो कैसे हो? हाँ भैयारो, आशा करत हो भगवान से प्रार्थना करत कि अपन सब जने नोनी हुई हो और स्वस्थ हुई हो और उम्दा तरह से अपनी खेती किसानी के काम भी निपटा रहे हुई हो। हाँ तो किसान भैयारो, ई वेरा अपन देखो जो सबसे मुख्य काम होते ही अपनो मुख्य काम होते ही वो है खरपतवार प्रबंधन। काहे के जो अपनी खरीफ की फसलें हैं ई में बहुत ज्यादा देखो अब एजारो होन लगो जी के लाने अपन के बहुत मशक्कत करने पड़त निकालवे के लाने। तो हम तो सबसे पहले अपन से भैया जो ही के वो चाहते ही कि अपन के जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रित करने, और अगर अपन देख रहे कि अपनी जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पा रहा, अपन एक यानी कि बड़े किसान हैं या बड़ी खेती करत, तो ऐसे में अपन जैसे रासायनिक दवाइयों को अगर प्रयोग करत तो उके लाने अपन के का करने, एक तो देखो समय के देख दवाई अपन के करने, और जो फसल लाए अपन उई की दवाई अपन देखो पूछे या दुकानदार भैया से पूछे और या फिर किसी विभाग संपर्क करें या देखो किसान कॉल सेंटर पे भी अपन फोन लगा के पूछ सकत कि हमारी खेत में जैसे मूंगफली की फसल है उमें खरपतवार है या धान की फसल है उमें खरपतवार है, तो वही के अनुसार अपन रसायन ले आके छड़क सकत। और भैयारो अपन के जो भी देखने के जो दवाई है वो दवाई को अगर पानी नहीं बरस रहा हो मौसम के देखत भाई भी छड़कने काहे से भैयारो, अगर जैसे अभी देख रहे अपन बरसात नहीं हो रही तो ऐसे में क्या होते कि अपन ने दवाई छड़क दी और घाम करो तो अपनी फसलन के भी नुकसान पहुंचाने लगत, अपनी फसल पीली पड़ने लगत या सूखन लगत। तो ऐसी स्थिति में अपन के दवाई ना छड़कने। और भैया रो का करने के जो अपनी चाहे धान की फसल है या अपन देखो मूंगफली की फसल, जी दो फसलें अपनी इतने बुंदेलखंड में ज्यादातर देखी जाती किसान भैया रो, देखो मूंगफली की तो मुख्य फसल अब खरीफ में नहीं लगी। तो ऐसी स्थिति में अपन देखें कि जब बरसात नहीं हो रही और अपने पास पानी की उपलब्धता है यानी कि अपने बोर में पानी है या अपनी खेत के का नदिया या तालाब है या अपनी जो निजी तलंजा खुदीती भी हैं, तो उमें ऐसे देखो अपन पानी उठा के और अपनी फसल में लगा सकत सिंचाई कर सकत। और भैया रो अपन का करने के एक तो रसायन छिड़कती भी रहा कछु बातन को और ख्याल रखने, एक तो अपन के देखो पूरी वाय की कपड़ा पहनने जिसे अपने शरीर पे ना गिर पाए वो, और जिसे अपनी जो त्वचा संबंधी बीमारी होती वो कौन तरह से अपन के प्रभावित ना कर पाए। और भैया अपन के जो खरपतवार नियंत्रण की देखो सीमित मात्रा में जब अपन के उसकी प्रयोग विधि पूरी अच्छी तरह से पढ़ लो समझ लो, कैसे ज्यादातर डब्बन पे लिखी रह के कितनी मात्रा में कितने बीघा के एक टंकी में के ढक्कन डालने हैं, तो

0: बई तरह से अपन खे छिड़काव करत भाई अपनी खेती बाड़ी के काम करने। और अगर अपन ने नोने ढंग से अपनी जो खरपतवार प्रबंधन करो तो आशा करत के अपन खे उम्दा पैदावार अपनी फसल से मिल है। किसान भैया रो अब अपन से हम बतकाव करत के अपने ई बेरा अपनी जो खेत की मेड़े हैं या अपनी जो बेड़ा डरे खाली जगह डरे बाड़े डरे उते अपन फलदार पेड़े जरूर लगा दो। कैसे अपनी देखो अच्छी अपन खे ताजी हवा तो दे वे ऑक्सीजन तो दे और संगे संगे देखो फल भी देते ही लकड़िया भी देते ही यानी कि पेड़ अपन के लाने कई तरह से उपयोगी होते ही। तो ऐसे में सही समय है अपन नए नए पेड़ लगाने। और अगर जो किसान भैया आ रहे बागवानी करबो चाहते ही तो ई बेरा अपने देखो बागवानी को भी समय है तो इसके लाने अपन संपर्क कर सकत अपने देखो इनका केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है उतर भी जाके पूछ सकत पौधा मिल रहा है कैसी क्या व्यवस्था है कब लगाने से ये सब जानकारी अपन के उतर मिल रही है। और भैया रो अब ऐसा ही एक उम्दा सी भेंट वार्ता अपन को हम सुनवा रहे हैं आज जा है बुंदेलखंड में सेब। हाँ भैया रो बिल्कुल अपन वहां सोच रहे जो बुंदेलखंड में सेब। हाँ तो बुंदेलखंड में सेब मियां जा की आम बा अन्य फलों की खेती कर रहे प्रगतिशील किसान नरेंद्र अखबार से अमरदीप भास्कर की बातचीत। तो सुनो भैया और उनने कितनी नोनी नोनी बातें बताई जो अपन देखो इन्हें असंभव समझत उनने देखो संभव करके दिखाओ। तो सुनो भैया और
1: किसान भैया हरो अपन देखो खेती बाड़ी के काम में तो लगे ही रहत और अपन खा बता दें कि खेती बाड़ी के संगे संगे अगर अपन खा अपनी आय बढ़ाऊने तो उके संगे खेती से जुड़े जो सहायक व्यवसाय हैं उन्हें अपन खा अपनाऊने पड़े तभी अपन की आय बढ़ सकत। खेती बाड़ी के संगे एक बढ़िया व्यवसाय है बागवानी और बागवानी में देखो अपन तरह तरह के फलदार पेड़ लगा के और उनसे अपन लाभ ले सकत और कार्यक्रम के माध्यम से भी देखो विशेषज्ञ भैयन से और जो प्रगतिशील किसान ई काम में लगे उनसे अपन तक जो महत्वपूर्ण जानकारी है बा पहुंचाउत रत। और बागवानी विषय पे जानकारी देवे की लाने आज हमारे बीच में उपस्थित है नरेंद्र राय कुमार जी और आप बुंदेलखंड में सेब और मियां जा की आम के साथ अन्य फलों की खेती कर रहे और बागवानी में ऐसे पेड़ पौधा लगाएं जिन पेड़ पौधन के नाम किसान भैया सुन के जा सोचत के जी अपने क्षेत्र में हो नहीं सकत लेकिन ऐसे ही असंभव से काम का संभव करो इन किसान भैया ने। नरेंद्र राय कुमार भैया आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं।
1: नरेंद्र भैया जैसो कि अपन बुंदेलखंड क्षेत्र में सेब की खेती कर रहे सेब को बगीचा लगाएं और मियां जा की आम जो अपने क्षेत्र में बहुत कम किसान भैया लगाए रत और ई आम के जो दाम है वे बाजार में बहुत अच्छे किसान भैया का मिलत जो किसान भैया की बागवानी कर रहे और आज अपन से बात करें बागवानी के बारे में जो अपन नए नए पेड़ पौधा लगा रहे और नए पेड़ पौधा लगा के लाभ भी ले रहे। तो सबसे पहला नरेंद्र भैया अपन से हम जानबो चाहे कि बुंदेलखंड में सेब की खेती अपन कर रहे और सेब की खेती को जब नाव आउत तो सब किसान भैयन के दिमाग में जो आउत के सेब की खेती एक ठंडे स्थान पे हो सकत या ठंडे प्रदेश जो है
2: उते हो सकत। सही बात कही आपने
1: उते हो सकत और अपन बुंदेलखंड में सेब की खेती कर रहे और सफल खेती अपनी है तो अपन सबसे पहला हमारे किसान भैयन का जो बताओ कि सेब जो कश्मीर में हो और अपने अपन बुंदेलखंड में ले रहे तो इसकी किस्म में कोनो अंतर है का?
2: बिल्कुल इसकी किस्म में अंतर है। जो बुंदेलखंड में सेब होते ही वो गर्म क्षेत्र के लाने तैयार करोगे भैया।
1: अच्छा
2: अच्छा जो हमारे किसान भैया हैं जो खेती के साथ साथ फलों की खेती भी करना चाहते हैं उनके लिए हरमन 99 नाम का एक सेब है जो हरमन शर्मा जी ने तैयार करो
1: जी
2: जो 40 से 45 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जो है फल दे देते।
1: अपन जो बताओ कि सेब तैयार कर वो एक मुश्किल काम तो है ही खासतौर से अपने गर्म क्षेत्र में तो अपन कहाँ से ये पौधा ले आए थे और कैसे इनका अपन ने लगाओ का देखभाल करी इस बारे में बताओ।
2: बिल्कुल का है जब हमारे दिमाग में जा बात आई कि ऐसो करने के अपने बुंदेलखंड में किसानन खा भी फायदा हुए सो हमने सोची कि ऐसे पौधा लगाओ जो कि अपने ते संभव ही नहीं है। तो हमने जो है हरमन शर्मा जी हैं ये हिमाचल के रहने वाले हैं इनसे संपर्क करो तो इन्होंने हमको जानकारी दी कि भैया सेब में हमें

0: खुद की एक वैरायटी है जिसको हमने HRMN 99 के नाम से तैयार करो। अब वहां से हम कुछ पौधे लेके आए, ठीक है। पहले तो हमने 4-5 पौधा लगाए थे भैया,
1: अच्छा,
0: कि हम देख लें कि भैया इनमें फल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पता चलो फल नहीं लगे और हम बर्बाद हो गए, लेकिन भैया बहुत अच्छे फल आए उसमें। तो जब ज्यादा अच्छे फल हमने देखे, हमने और लोगों ने कहा बताई, तो भैया वे लोग तो सुन के ही और देखे ऐसा हो ही नहीं सकत, जो तो कश्मीर में और ठंडी जगह में होता ही। फिर हमने जो है उनसे संपर्क करो कि इमें तनक छोटे फल आ रहे और इखा तनक और अच्छो करने, तो उके लाना का करो जाए। तो उन्होंने हमको जानकारी दी कि भैया आपको जो है कुछ स्प्रे करने पड़ेंगे
1: जी,
0: ठीक है। कुछ दवाइयों का उन्होंने हमें बताया, जैसे कि NPK 0.05, तो उसके बारे में जानकारी दी कि इसके आपको 3 से 4 स्प्रे करने पड़ेंगे। जब फूल आते ही भैया सेब पे, तो उस समय पे फूल आवे के समय हमें फंगीसाइड का उपयोग करो जात, जो कि फफूंदी से बचाता है।
1: तो अपन जो बताओ, अपन साल भर जो देखभाल करत, तो उमें कितने कितने समय पे अपन इनकी सिंचाई करत, और खाद के बारे में भी बताओ कि खाद अपन कौन सो डालत, और फल अपन का कौन महीना में मिलन लगत।
0: देखो ये इके लाने हम आपका सबसे पहली बात बता दें कि इसके जो पौधा है, ये पौधा आपको ठंडों के समय में लेना है। ये आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीना के बीच में ही आपको ये पौधा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे पौधा होता है सुस्त अवस्था में, डोरमेंसी अवस्था में। इसके बाद जब आपने लगा लो, तो आप लगाते ही समय इस चीज को ध्यान देना कि आप गोबर खाद डालना है इसमें, जो कि 1 साल पुरानी हो गए, ठीक है। अपन खा ऑर्गेनिक खेती के तरफ ध्यान देना,
1: जैविक खाद से बढ़िया अपन खा लाभ मिल रहा है अपने पेड़ पौधन में। नरेंद्र भैया, हम अपन से जानबो चाहें कि सेब के कितने पौधा अपन लगाए।
0: सेब के हमारे पास भैया 200 पौधा लगे। हमने जब ये 4 पौधा लगाए थे, सो हमने रिजल्ट ले लो तो इको, फिर ई के बाद हमने 200 पौधा मंगवाए थे।
1: और सेब को जो पौधा लगाओ जब, तो उके लाने एक पौधा से दो पौधा की दूरी अपनी कितनी है?
0: आपका एक पौधा से दो पौधा की दूरी कम से कम 10 फीट रखना चाहिए।
1: अच्छा, 10 फीट में आसानी से वो बढ़वार करत है।
0: हाँ, और लाइन की लाइन दूरी जो है 8 फीट होना चाहिए।
1: अब सेब के बारे में अपन से जानबो चाहे कि कितने फल अपन का एक साल में सेब के पेड़न से मिल जाते।
0: आपने फल की बात करी, तो कम से कम एक पेड़ खा आप 3 साल तक लगा के रखने, तब जाके आप फल की बात कर सकते हैं, क्योंकि पहले साल में तो जो है उसका फूल आएगा और गिर जाएगा। दूसरे साल में आपका 2-4-5 सेब खाने को मिल जाएंगे, लेकिन तीसरे साल में ये मान के चलो कि कम से कम 5 किलो फल आपका एक पेड़ से मिल जाए।
1: जो बताओ कि कुल मिला के अपन का कितनी आमदनी सेब के बगीचा से हो रही?
0: एक पेड़ खा सही तरीका से, पूर्ण तरीका से बने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं, और एक पेड़ कम से कम 1 क्विंटल फल आपको दे देगा, 100 किलो फल आपको मिल जाए।
1: अच्छा,
0: और आज के समय में मार्केट में सेब 100 रुपया से लेकर के 150 रुपया किलो सस्ता दाम है। ये जो महंगा दाम है वो 200 रुपया किलो है, लेकिन जो हमारा ये सेब है ये 150 रुपया किलो अभी मार्केट में चल रहा है।
1: नरेंद्र भैया, अब हम अपन से जानबो चाहे कि जो बाजार में बाहर से सेब आउत, उनको रंग लाल रहत, कछु पीले रंग के रहत, तो अपन ने जो सेब लगाओ उको रंग कैसो होत, और बाजार में कैसी का मांग है?
0: अपन ने जो सेब लगाओ इको रंग तो देखो ऐसा है, तनक हल्को लाल है और हल्को पीलो भी है, ठीक है। अगर आप कच्चे में तोड़ लो इखा, तो फिर हरो हरो रहे थोड़ो।
1: अच्छा, लेकिन खास की बात करें,
0: खावे में जो है खट्टो मीठो है।
1: अच्छा,
0: हल्का खट्टो रहे और मीठो जूसीलो है, इसमें जूस रहता है,
1: रसीलो फल,
0: रसीलो है।
1: अच्छा, जो बताओ कि मांग कैसी रहत बाजार में?
0: मांग के लाने तो देखो अच्छो टेस्ट है, सो मांग तो है ही, और इस समय पे सेब कश्मीर को आता नहीं है, जो है बाजार में अपनो ही सेब पहुँच पाता।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये जुलाई में ही आता है, जुलाई अगस्त में।
1: जो तो भाव अपन से बतकाओ सेब की बागवानी के बारे में, सेब की बागवानी के संगे संगे अपन मियाजा की जो आम है, उनकी भी बागवानी कर रहे। तो अपन जो बताओ, मियाजा की आम के पौधा अपन ने कहाँ से मंगाए थी, और अपन ने कैसे तैयार करो अपने बगीचन में?
0: मियाजा की आम जो की जापान का मियाजा की शहर का ये आम है, और ये जो है बहुत ही मीठा होता है।
1: अच्छा,
0: इसको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको 3.25 लाख रुपया किलो तक इसका दाम गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन अपने भारत की बात करें या अपने बुंदेलखंड की बात करें, तो बुंदेलखंड

0: इसका एक आम की कीमत 1000 रुपया है, एक आम का पीस। ठीक है, अच्छा, इस पौधे को हम लाए थे वेस्ट बंगाल कोलकाता से,
1: पश्चिम बंगाल से ले आए थे अपन।
0: जी
1: जी, तो अपन जो बताओ मियाजा की आम के कितने पौधा अपन लगाए?
0: इसके हमारे पास 15 से 20 पौधा है।
1: फल देने लगे?
0: हाँ, फल आने लगा है।
1: अच्छा, तो अपन बेचवे के लाने कितने ले जाते?
0: बेचवे के लाने हम ऑनलाइन ही ऑर्डर लग जाते, हमारे संपर्क ही हैं जो संपर्क में जुड़े हैं, तो बिल ऑनलाइन हमसे खरीद लेते।
1: तो जाए एक अच्छी बात है, कछु किसान भैया का नाव ही सुन के जो लग रहा हुए कि जो कौन सी आम की किस्म है और अपन की खेती कर रहे। अपन जो बताओ जैसे अन्य किसान भैया मियाजा की आम लगाओ चाहे, तो भी कहाँ से पौधा मंगाएं और का खास देखभाल करें जिससे उनकी सफल पेड़ तैयार हो सके?
0: देखो भैया, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मियाजा की आम के बारे में बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही, क्योंकि मियाजा की आम बड़ी मुश्किल से मिल पाते ही। तो आप जिस भी नर्सरी से आप लेंगे तो पहले आप पता करें कि उनके पास उनका मदर प्लांट है कि नहीं है।
1: अच्छा,
0: ठीक है, जो पतो जरूर कर लें। ठीक है, अगर उनके पास उनको खुद को मदर प्लांट है तभी जो है वहां से आप पौधा खरीदें, और यदि आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप वेस्ट बंगाल की कोई अच्छी नर्सरी देख लें, ऑनलाइन बहुत सारी नर्सरी मिल जाएंगी। एक जानकारी और हम दे वो चाह रहे हैं, मियाजा की आम के जैसे ही हमारी पूसा यूनिवर्सिटी ने कुछ आम निकाले हैं। अच्छा। जैसे कि पूसा अरुणिमा, पूसा अरुणिका, पूसा पीताम्बरा, पूसा लालिमा, ये कुछ अच्छी वेरायटी है, 10-12 वेरायटी है जो कि रंगीन किस्म की वेरायटी है। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान देना है अपन को कि जो पहले समय में खेती होती पेड़न की वह होती ऐसी कि अपन काफी दूरी पे लगाते हैं आम के पेड़, लेकिन अब क्या करना है अपन को कि अपन को 12x20 के हिसाब से चल रहे हैं, 12 लाइन बाई लाइन की दूरी होगी और 20 पौधे की दूरी होगी पौधे से।
1: अच्छा,
0: ठीक है, तो इसमें क्या है, लाइन से लाइन की दूरी 12 होगी तो आराम से आप दूसरी फसलें भी इसमें कर सकते हैं, जैसे कि मटर है, चना है, गेहूं है, इन सब की फसलें भी अपन ले सकत और पेड़ पौधा भी लगा सकत।
1: तो दोहरो लाभ नरेंद्र भैया अपने किसान भैया का हो सकत इसे, और आप भी ले रहे के फल तो मिल ही रहे, फल के संगे संगे अपन जो अनाज बाई फसले हैं ये भी लगा ले तो उसे भी फायदा हो जाता। नरेंद्र भैया, अब हम अपन से जानवो चाहे अन्य कौन कौन से पौधा अपन लगाए, अपन ने प्रयोग के तौर पे जो शामिल करे हुए कि इनकी भी खेती अपन भविष्य में कर सकत, तो वे कौन कौन से पौधा है जो अपन लगाए अपने बगीचा में?
0: देखो हमारे पास तो कम से कम 30-35 अलग अलग तरह की वेराइटियाँ हैं, जिनमें से हम जिनमें सफल हुए हैं वो हमारे पास है, जैसे कि आड़ू, आलू बुखारा
1: जी,
0: सेब, बादाम, तो ये कुछ गर्म क्षेत्र की ऐसी वेराइटियाँ हैं जो कि आप आराम से अपने खेत की मेड़ पे भी लगा सकते हैं, और जो है इनका आप जो है लाइन बाई लाइन के हिसाब से भी लगा सकते। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना है कि जैसे कि आप खेती कर रहे तो खेती में मान लो कि बारिश सही से नहीं भई तो इनमें कम पानी में भी काम चल जाता है। ठीक है, अच्छा, और भी हमारे पास कछु पौधा ऐसे हैं जिनका आप लगा करके लाभ ले सकते हैं।
1: अपन भी लगाएगा भैया?
0: हाँ, जैसे कि इलायची है हमारे पास, रुद्राक्ष भी लगो जो गले में माला पहनत, अमरूद में भी हमारे पास 10-15 वेरायटी है अलग अलग। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ताइवान पिंक अमरूद है, ठीक है, हमारे पास इलाहाबादी सफेदा है, ठीक है, हमारे पास ब्लैक डायमंड है, ठीक है, रेड डायमंड है, लेकिन जो बाहर की जो नस्लें हैं वो अपने यहाँ कम फल देती हैं, जैसे कि ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड, तो ये सब अमरूद लगाने से अच्छा है आप जो है अपने पास की लगाएं, जैसे इलाहाबादी सफेदा। लीची भी है हमारे पास, लीची है, कीवी है, कि नींबू है, हाँ, संतरा है, मौसम्बी है, ये ऐसी फसलें हैं कि इनको लगा करके आप अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं।
1: अपन बहुत सारे नए नए पौधा लगाए देखो, और जिन्हें बुंदेलखंड क्षेत्र में मानव जात के जिन्ना हुए और भी अपन सफल तरीका से तैयार कर रहे, तो अपन ने जो जितने पौधा बताए ये फल देने लगे?
0: हमारे पास लीची जो है फल दे रहा है, चीकू फल दे रहा है, इलायची फल दे रहा है, रुद्राक्ष फल दे रहा है।
1: अच्छा,
0: कुछ कुछ पौधे किसानों को हम फ्री दे रहे हैं ताकि उनको इन चीजों का अनुभव हो और फिर वो बड़े पैमाने पर लगा सकें, उनसे उसका लाभ लें।
1: तो जोन किसान भैया अपन से संपर्क करो चाहे कि हमें जी पौधा लगा उन्हें, तो उन्हें मिल सकत का?
0: हाँ, हम दिलवा दें उन्हें पौधा, कछु पौधा तो हमारे पास है, हम खुद तैयार कर रहे हैं, और जो हमारे पास नहीं मिले भी हम कहीं से आपको व्यवस्था करवा दें।
1: नरेंद्र भैया देखो, अपन एक बहुत अच्छे काम में लगे और बागवानी

0: कि काम में अपन बड़े प्रगतिशील तरीका से बड़े लगन से काम कर रहे, जैसे अपन बड़े पैमाने पे इनकी खेती कर या अन्य कोनो किसान भैया करो चाहू तो ऊ किलाने बाजार कहाँ है, कहाँ बेचे वो?
1: देखो सबसे पहले तो आपको बता दें बाजार आप अपने खेत से ही बनाना चालू करें। आजकल डिजिटल जमाना आ गया है तो सब लोग भैया किसान भैया आपको बता दें कि आपको जो है मोबाइल को उपयोग करना है, अपना एक छोटा सा वीडियो बनाना है उस पौधे के बारे में और उससे लाभ क्या होगा उसके बारे में जानकारी आपको अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, सबसे अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है।
0: नरेंद्र भैया हम अपन से एक बात और जानवो चाहे कि जा तो बात भाई गांव की, गांव में अपने पास जमीन हो वो जमीन पे अपन बागवानी को काम कर सकत, अपने जो शहरी क्षेत्र है उते अगर कोनो भैया लगाओ चाहे कि हमें पेड़ पौधा तैयार करने तो कोनो उकिलाने भी विधि है का?
1: हाँ भैया बिल्कुल है। देखो उन लोगों का तो हम बता दें कि भैया आप लोग जो है सबसे अच्छा ये है कि आप अपना इंटरेस्ट दिखाएं कि आपको भी पौधा लगाना है, ठीक है। जो हमने ये वेराइटियां बताई हैं ये सभी वेराइटियां सभी किस्में कलम से तैयार होती हैं तो इनको बोनी किस्में कहा जाता है। इनको हम छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं, आप 15x15 के जो गमले होते हैं उनमें लगा करके आप फलों का आनंद ले सकते हैं। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा फलों को खरीदने, आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं।
0: और जैसे कोनो भैया अपने घरे गमलन में पौधा लगा ले उनने तो देखो समय समय पे पौधन का पोषक तत्व की भी जरूरत पड़ा तो उनके लाने कौन से पोषक तत्व भी डाल सकत?
1: उसके लिए आप जो है आप लिक्विड फॉर्मेट में भी आता है जिसको हम जेब्रोलिक एसिड बोलते हैं और जो है आप जो है उसमें गोबर खाद का कम मात्रा में उपयोग करके भी, ज्यादा मात्रा में डालोगे तो आपका पौधा जल जाएगा इसलिए कम मात्रा में आपको डालना है। ह्यूमिक एसिड हो गया ये 1 लीटर में 1 ग्राम डाला जाता है, ये भी जो है खाद का काम करता है, ठीक है। तो इसको डाल करके आप अपने पौधों को पोषक तत्व दे सकते हैं और अच्छे फलों को ले सकते हैं गमले में।
0: नरेंद्र भैया अपन पढ़े लिखे भी लग रहे तो अपन जो बताओ कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक अपन ने करी और बागवानी के क्षेत्र में अपन कैसे जुड़े?
1: हम जो है जब कोरोना चला था तो हम कोरोना में बेरोजगार हो गए थे।
0: अच्छा,
1: तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता था आखिर करें क्या। अच्छा, हमारी पढ़ाई के बारे में बात आप करोगे तो हम जो है एमटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से और मैं नौकरी भी कर रहा था लेकिन कोविड में हमने नौकरी छोड़ करके फिर खेती पर निर्भर हुए तभी हमने ये खेती चालू की।
0: अपन देखो पढ़े लिखे हो और अपन बागवानी में बढ़िया काम कर रहे, अच्छी किस्म की अपन पौधा लगाएं। बात करें आय की तो अपन जो बताओ कि नई नई किस्म की जो अपन बागवानी कर रहे उसे आय अपन का कितनी हो जाती?
1: यदि आप आम की खेती करते हैं तो आम की खेती में आपको 1 साल में 1 बीघा से कम 3 लाख की आय है। यदि आप सही तरीके से उसको करते हैं तो 5 लाख तक आपकी आय चली जाएगी, ठीक है। अगर आप सेब की खेती करते हो तो सेब की खेती में आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपया 1 बीघा में मिल जाएगा, लेकिन सेब के साथ साथ आपको अन्य छोटी छोटी चीजें और लगानी पड़ेंगी जैसे कि आपकी हल्दी हो गई, अदरक हो गया, आप स्टीविया की खेती भी कर सकते हैं उसमें, जैसे मीठी तुलसी बोलते हैं, ये शुगर के काम आती है, अपने यहाँ सफल भी है
0: जी। देखो नरेंद्र भैया अपन बहुत अच्छे काम में लगे और बागवानी से बढ़िया आय ले रहे। अपन ने बुंदेलखंड में सेब मियाजा की आम के साथ अन्य फलों की खेती के बारे में हमारे किसान भैया का इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, ई के लाने अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भैया रो अबे अपनों ने देखो कितनी उम्दा भेंट वार्ता सुनी जी को विषय हेतु बुंदेलखंड में सेब मियाजा की आम व अन्य फसलों की खेती कर रहे प्रगतिशील कृषक नरेंद्र अखबार से अमरदीप भास्कर की बातचीत। तो अपन ने देखो कितना उम्दा बतकाव सुनो कि इनने लीची की और रुद्राक्ष की और आम की और सेब की बागवानी कर रहे और अच्छा लाभ भी कमा रहे। और भैया रो अब तनक रुकत और सुनत जो संदेश हो।
3: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसल में कितनी पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझ ही में नहीं आऊ।
4: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य

0: आदि से संबंधित जानकारियाँ और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियाँ बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
1: अरे सच में भैया?
0: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ
2: किसान भैया, देखो अपन ने कितना अच्छी उम्दा जानकारी सुनी और अपन से बतकाव करत के अपन देखो पेड़न की बात हमने जैसे शुरू में चर्चा करी थी कि अपन के अपने ये वेरा सही समय है खेतन की मेड़ पे या खाली पड़ी जमीन पे पेड़े जरूर लगाने। तो ऐसा ही एक उम्दा सो लोकगीत हम अपन को सुनवा रहे जिखे गावे वाय भैया हैं खूबचंद कुशवाहा और उनके संगी साथी। तो देखो इनने पेड़न से संबंधित अपने गांव के दृश्य को भी वर्णन करो तो अपन सुनो और हम सुने।

किसान पंच भैया, अबे अपन मन ने कितनो उम्दा जो पर्यावरण गीत सुनो। और जीखे गावे वाले भैया थे खूबचंद कुशवाहा और उनके संगी साथी। किसान भैया रो अपन ने देखो, अब खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन सोई करत तो

पशुपालन की लाने हम बता दें अपन के, एक तो अपन ने अपने गांव में चलत एक देखो एम्बुलेंस की तरह एक कार देखी हुई है, तो ऊपर 1962 नंबर भी लिख हुई है। हाँ भैया पशुअन की देखो इलाज के लाने जा कार घूमत फिरत, अपन 1962 यानी कि 1962 पे अगर फोन लगाओ तो अपने पशु के जो समस्या है उसको इलाज कर भी वह कार अपने घरे आ जाए। और ऐसा ही एक ऐप भी है भैया भारत सरकार को, अपन देखो आज को युग मोबाइल को युग है, तो अपने ऐप मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल में 1962 भारत पशुधन ऐप डाउनलोड कर सका, जी पे अपन देखो अपने पशु के बेच वो चाह रहे खरीद वो चाह रहे वह जानकारी, अपने पशुधन की बीमारी से संबंधित जानकारी और पोषण संबंधी जानकारी यानी कि सभी तरह की जानकारी अपन के ये ऐप पे मिल जाए। तो है ना भैया कितने काम को ऐप, तो अपन वाले इन नई नई तकनीकियों को देखो लाभ लेके और अपनी खेती किसानी के काम और आसान कर सकत। कैसे अगर अपन जागरूक बनी रहो तो भैया रहो सब काम अपनी देखो अच्छी तरह से उम्दा ढंग से हो जाए और जिसे अपन के लाभ भी हुई है किसान भैया रहो। और चलत चलत अपन से हम जो ही वो चाहते ही कि जो किसान भैया देखो खरीफ के मौसम में धान की फसलें लाए, तो ऐसी में कहा है बरसात नहीं हो रही, तो ये भी जिन किसान भैया के पास पानी की उपलब्धता है या पानी के संसाधन है तो भी देखो सिंचाई कर देवे अपने धान की खेतन में भर देवे। और अपन ने देखो उबेरा बनिया सो बना बनाई लई क्यारी रूप में, तो क्यारियन में पानी भर दो जिसे अपनी फसल हरी भरी बनी रहे और बढ़ोतरी होत रहे। तो किसान भैया अब देखो कार्यक्रम को समय भी पूरा हो गो, तो जल्दी से निकालो पेन कापी और लिखो कार्यक्रम को पतो। कार्यक्रम चौपाल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मेडिकल कॉलेज रोड झांसी, पिन कोड है 284128। और भैया अपन के बता दें आकाशवाणी झांसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, तो अपन अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के हम तक पहुंचा सकत। अब अपने भैया संतोष पाल को दो आज्ञा, नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। सात बजकर 19 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और लखनऊ केंद्र से एक होगी स्वास्थ्य वार्ता 7:31 पर। खुशबू माटी की बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा 7:45 पर। रात्रि 8 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो कि आधारित होगा एक ही कलाकार पर। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हेलो झांसी फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम जिसमें स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग होगा विवेक चौबे का और प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि कुमारी।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात 10 बजे और 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। रात 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी में समाचार।

श्रोताओं, ये था आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, नए पुराने गीत सुहाने का। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं राजी फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज में। गीत को लिखा है अलामा इकबाल ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सुन रहे थे राजी फिल्म से। आवाज थी सुनिधि चौहान की और गीत को लिखा था अलामा इकबाल ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।

ये गीत आपको सुनवा रहे हैं बागी टू फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है संदीप श्रोतकर ने।

शुदा कार्यक्रम में आप ये गीत सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था हजरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे बॉडीगार्ड फिल्म से। आवाज थी हमें शेषम यार श्रेया घोषाल राहत फतेह अली खान की। तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने और गीत को लिखा

0: कहा था नीलेश मिश्रा ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने आकाशवाणी के झांसी केंद्र से।
1: भैया कछु अनमने दिखा रहे, क्या बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: हैं? अपन को भैया पता नहीं, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान।

0: कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हो हमारे किसान भैया परेशान।

श्रोताओं अगला गीत आप सुन रहे हैं एक्शन रिप्ले फिल्म से सुनिधि चौहान और ऋतु पाठक की आवाज में। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फूल बने अंगारे फिल्म से। आवाज थी बप्पी लहरी, अलका याग्निक की, और तर्ज बनाई थी बप्पी लहरी ने, और गीत को लिखा

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे कर्ज फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अग्नि साक्षी फिल्म से।

कविता कृष्णमूर्ति के गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम चवन ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं कोई मिल गया फिल्म से शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे कोई मिल गया फिल्म से। आवाजें थी शान और कविता कृष्णमूर्ति की। इसी गीत के साथ ही नए पुराने गीत सुहाने अब कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे
0: और छोटी ये तुम्हारे ना, और ये
2: मेरी गुड़िया की ना।
0: फिर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: चुप चुप बोलो
4: क्या।
3: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और सशक्त बनाएगा ये कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में प्रदेश सरकार को एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश। दो हफ्ते में मांगी जांच की पहली स्टेटस रिपोर्ट। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। पेश एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा पर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एक बार प्रस्तावित कानून बन जाने और टास्क फोर्स के पूरी क्षमता से काम शुरू कर देने के बाद देश में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छी कमेटी बनी है। आप सब लोगों ने भी नाम देखा होगा, नंदन जी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनाया है श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने, अपने अपने क्षेत्र के महारथियों को उसमें शामिल किया है और मैं समझता हूं कि ये महत्वपूर्ण विधेयक जब कानून का सकल अख्तियार करेगा और ये टास्क फोर्स अपने जब पूरी तरीके से अस्तित्व में आकर अपने काम को आगे बढ़ाएगा तो पेपर लीक जैसे मामले देश में दोबारा हमको लगता है कि अब सुनाई नहीं दे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों

0: परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त धनराशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसआईटी को जांच के संबंध में 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बताया कि लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस अधिकारी एस किरण की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में एक पुलिस उप महानिरीक्षक और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल ने एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के पीठ के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय की पीठ मामले के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच और मंदिर ट्रस्ट के वित्त काल लेखा परीक्षा करने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी। उधर इस मामले में अयोध्या में आज एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की है। इसको लेकर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराए।
1: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदरपूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 जुलाई को वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ये अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। वाराणसी में इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने बताया कि अभियान 5 चरणों में संचालित होगा। इसका उद्देश्य गुरु रविदास के समरसता, कर्मयोग, भक्ति और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है।
2: संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है पूरे देश में संत रविदास जी के विचारों को, उनके आदर्शों को ले जाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम है 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य निरंजन दास जी के कर कमलों से 131 कलशों को पूरे देश में भेजा जाएगा। इन कलशों का कई जगह पर जिला मुख्यालय पर पूजन और सम्मान होगा।
0: राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा खतरे के निशान के पास बह रही है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश, परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और सशक्त बनाएगा ये कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि

0: मंदिर चढ़ावा प्रकरण में प्रदेश सरकार को एसआईटी में फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश, दो हफ्ते में मांगी जांच की पहली स्टेटस रिपोर्ट। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने कल अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:31 हुए हैं और प्रस्तुत है स्वास्थ्य वार्ता। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है लिवर की सूजन, हेपेटाइटिस, कारण व निवारण। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रीतम और इनसे बातचीत कर रहे हैं देवाशीष।
5: स्वास्थ्य वार्ता के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी जब हम सो के उठते हैं तो हमारा जो शरीर रहता है वो दर्द करता रहता है। कभी कभार हमें अंदर से हरारत भी होती रहती है, तो हमें लगता है कि शायद ये वायरल चीजें हैं और जो समय के साथ वो ठीक हो जाएंगी, परंतु ये चीजें ठीक नहीं हो पाती हैं। और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे लीवर में शायद सूजन हो गई है, या हमें फैटी लीवर हो गया है, या यूं कहा जाए कि हम हेपेटाइटिस से ग्रसित हो चुके हैं, कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ये सब चीजें तभी पता लगती हैं जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। आज का हमारा विषय है लीवर की सूजन, हेपेटाइटिस, कारण व निवारण। कि जो भी मरीज हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, अगर वो हेपेटाइटिस से ग्रसित हैं तो वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रीतम दास जी, जो कि गेस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: नमस्ते।
5: सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं सर कि जो लीवर होता है ये हमारे शरीर में कैसे फंक्शन करता है।
6: लीवर का मेन काम रहता है मेटाबॉलिज्म करना। जो हम लोग खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाने के मेन पार्ट होते हैं, उसको मेटाबोलाइज, उसको तोड़ के शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करना मेन लीवर का काम है। और साथ ही साथ जो खराब टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको शरीर से निकालना लीवर का पार्ट है।
5: तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे कुछ टेस्टिंग कराता है, वो कहता है कि आपको पीलिया हो गया है, हेपेटाइटिस ए हो गया है, तो ये क्या होता है हेपेटाइटिस, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
6: हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन को हेपेटाइटिस बोलते हैं सरल अर्थ में। हेपेटाइटिस कुछ कुछ कारण के वजह से होता है, जैसे कुछ वायरस के वजह से होता है, जो हेपेटाइटिस ABCDE, उसके अलावा और भी शराब सेवन से, या फैटी लीवर, या कुछ और कुछ कुछ ड्रग्स लेने से लीवर में असर करता है। ये सब चीजें लीवर में सूजन बनाता है, जिस वजह से आगे जाके सिरोसिस या लीवर कैंसर होने का संभावना रहता है। इंडिया में सबसे कॉमनली शराब और हेपेटाइटिस वायरस के वजह से लीवर में असर करता है। और अभी हमारा जीवन शैली के दिक्कत के वजह से अभी फैटी लीवर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है।
5: तो जैसा कि हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये अलग हेपेटाइटिस है, या कोई व्यक्ति अगर हेपेटाइटिस ए से, बी से, सी से ग्रसित हो जाए तो कैसे अपने आप को पहचान सकता है कि ये बीमारी मुझे हो चुकी है।
6: हेपेटाइटिस वायरस, पीलिया, कम लगना, मिचली, उल्टी, पेट में पानी होना, इन सब चीजों से पहचान में आ सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग शुरुआत में लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसमें लीवर एंजाइम्स भरा हुआ रहता है, बिलिरुबिन भरा हुआ रहता है। फिर हम लोग हेपेटाइटिस का अलग अलग जो कारण है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये पानी से आता है, जो हम लोग खराब जगह से कभी, जैसे आजकल बच्चे मोमोज, चाउमीन ऐसे बाहर से खाते हैं जो ढंग से ढका हुआ नहीं रहता, हाइजेनिक नहीं रहता है, वहां से ये हेपेटाइटिस ए और ई जो पानी से फैलता है ये आने का संभावना रहता है। जो हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये संक्रमण से होता है, कोई ब्लड प्रोडक्ट से या बॉडीली फ्लूइड से या कोई संक्रामित इंजेक्शन लगाने से ये बीमारी आता है।
5: तो जैसा कि आपने बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो हमारा गंदे पानी पीने की वजह से हो सकता है, तो क्या ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के हेपेटाइटिस से ग्रसित हो और मैं उसके साथ बैठूं बातचीत करूं तो क्या मुझे भी संक्रमण हो सकता है?
6: बैठ के बातचीत करने से कोई भी हेपेटाइटिस ए ई हो या फिर बी सी डी

0: हो, बैठ के बातचीत करने से कोई भी हेपेटाइटिस नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई सिर्फ गंदा पानी या गंदा पानी से जो खाना जा रहा है उससे जाता है। मान लीजिए कोई दुकान से कोई पर्टिकुलर एरिया में ढंग से खाना नहीं बन रहा है, साफ सुथरा नहीं बन रहा है, वहां से एक साथ 10-15 लोग एक साथ खाना खा लिए तो एक साथ सबको होने का संभावना रहता है। इस तरीके से हेपेटाइटिस ए और ई लोगों के पास जाता है। जो हेपेटाइटिस बी सी और डी जो खून से जाता है वो प्रेडोमिनेटली बॉडी फ्लूइड से जाता है, या खून टच होना या जो बिना टेस्टेड खून चराने से या फिर कोई बॉडी फ्लूइड से या फिर जो इंजेक्शन कुछ कुछ जैसे पंजाब जैसे जगहों पे जहां पे कुछ पॉपुलेशन में ड्रग्स लेने का प्रॉब्लम है वो जो इंजेक्शन यूज करते हैं उसके थ्रू बी सी और डी फैलता है।
1: तो अगर बात की जाए कि हेपेटाइटिस तो नाम ही कह सकते हैं कि काफी ज्यादा ऐसा शब्द है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुनता है तो उसको घबराहट ही होती है, तो इसे क्या लक्षण होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कैसे पहचान सकता है कि वो कौन से हेपेटाइटिस से ग्रसित है?
0: पहले तो कभी भी हेपेटाइटिस सुन के ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी पहचान में आएगा उसका ट्रीटमेंट उतना जल्दी होगा और आगे कॉम्प्लिकेशंस उतना पहले डिटेक्ट होगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना कम होगा। तो जितना जल्दी ट्रीट होगा उतना जल्दी आगे का जिंदगी मिलेगा। और ये जो सारे जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई सबका टेस्ट करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है। जैसे जो पानी से फैलता है हेपेटाइटिस ए और ई, इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, एलाइजा वाला टेस्ट है, जिससे हम लोग पता चलता है कि कौन सा वायरस हुआ है। सिमिलरली हेपेटाइटिस बी सी डी, उसके लिए भी अलग तरीके का टेस्ट है। उसका डीएनए आरएनए देखते हैं कितना शरीर में मात्रा है कि नहीं है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये आगे जाके सिरोसिस करवाने का संभावना रखता है, जो आगे जाके जिंदगी को और ज्यादा खराबी होने का संभावना रखता है, जिसमें पेट में पानी, बेहोशी, खून का उल्टी होने का संभावना रहता है। तो हेपेटाइटिस बी सी डी जल्दी पकड़ में लाना जरूरी है, क्योंकि अभी जितना जल्दी वो ट्रीट होगा आगे जाके कैंसर होने का संभावना उतना कम होगा। तो पहले तो अगर किसी को मिचली ज्यादा हो रहा है, उल्टी महसूस हो रहा है, भूख कम लग रहा है, आंखों में पीलिया आ रहा है, तो सबसे पहले तो लीवर फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड करवाना, ये बेसिक जांच है। अगर लीवर फंक्शन टेस्ट में लीवर एंजाइम्स जो एसजीओटी एसजीपीटी बोलते हैं अगर ये बड़ा हुआ रह रहा है या बिलिरुबिन बड़ा हुआ रह रहा है तो एक फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को उस टाइम दिखाना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जो आगे जाके लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करता है जो हेपेटाइटिस बी सी है, ये जल्दी पकड़ में आए, ये जल्दी पकड़ में आएगा तो आगे कॉम्प्लिकेशन करने का संभावना कम होगा। तो सबसे पहले एक लीवर फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में पानी आ रहा है, लीवर में गांठ आ रहा है, ये दोनों डेंजर साइन है, तो जल्दी उसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। वैसे लीवर फंक्शन टेस्ट में अगर बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ा हुआ रह रहा है, एसजीओटी एसजीपीटी 40 के ऊपर जा रहा है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ रहा है, तो पहले तो कारण ढूंढना जरूरी है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है।
1: इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, आपने जो बताया कि एलएफटी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, इस टेस्ट के माध्यम से हम अपने आपको पता लगा सकते हैं, क्योंकि बीमारी अगर का ट्रीटमेंट समय से नहीं किया जाए और वो बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होती है और हमें शायद ये परमानेंट डिसेबिलिटी भी कर सकती है। क्योंकि अक्सर लोग सुनते हैं कुछ लोग का लीवर ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली भी होता है और इसमें सर्वाइवल चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि लीवर ही सबसे हमारा स्ट्रांग ऑर्गन होता है बॉडी का, जो कि काफी समय तक फाइट करता रहता है और सबसे लेट में जाके वो अफेक्टेड होता है। बाकी सारे ऑर्गन तो हमें लगता है कि शायद वो थोड़ा जल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन लीवर जो सबसे है हमारा ऑर्गन वो काफी स्ट्रांग ऑर्गन है। तो इसके अलावा हम जानना चाहते हैं कि कैसे इसको रोक सकते हैं, समझ में आ गया कि इससे क्या लक्षण है और कार्ड भी आपने बता दिया कि संक्रमित से हो सकता है या गंदे पानी से भी हो सकता है, तो फिर इसके रोकने के क्या उपाय हैं?
0: जैसे इसको दो तरीके से हमें देखना है, एक तो जो संक्रमण के थ्रू आ रहा है, एक गंदा पानी के थ्रू आ रहा है। जो गंदा पानी के थ्रू जो हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ई आ रहा है, पहले तो बाहर मोमो चाउमीन और चाट थोड़ा सा देख के खाना है, क्योंकि अगर हाइजीन नहीं मेंटेन होगा तो ये वायरस उसी से आएगा और इन्फेक्शन करवाएगा। तो बाहर खाना थोड़ा सा कम करना है, साफ सुथरा खाना खाना है, घर का खाना खाना है, तो ये लीवर को बेहतर रखता है। दूसरी तरफ जैसे हेपेटाइटिस बी सी डी जो खून या संक्रमण के थ्रू आता है, इसके लिए पहला तो हालांकि यूपी में कम है, पंजाब जैसे स्टेटों में ज्यादा है, जो ड्रग एब्यूज होता है, ड्रग जो इंजेक्टेबल सिरिंज के थ्रू यूज करते हैं और वही सिरिंज बार बार और भी लोग यूज करते हैं और वहीं से एक से और 10 लोगों का हो जाता है और ऐसे ही फैल जाता है, पहले तो ये जो ड्रग ये कम करने पे ध्यान देना है। और दूसरा टैटू, जो पहले के समय में देखा जाता था गांव में, वो टैटू बहुत सारे औरतें और बहुत सारे लोग टैटू लगाते थे और वो एक ही टैटू वाला मशीन से ऐसे 20-25 लोग एक साथ लगाते थे और वहां से एक से दूसरे को हो जाता था। ये दोनों चीजों पे ध्यान रखना है। पहले के समय में खून चराने पे कुछ कुछ लोगों का होता था, पर आज की डेट में गवर्नमेंट का काम और सारे जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे हेपेटाइटिस बी सी चेक करते हैं, तो उसका कम हुआ है। फिर भी अनऑथोराइज्ड ब्लड प्रोडक्ट चराने से भी थोड़ा बचाव जरूरी है।
1: अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम वैक्सीनेशन के माध्यम से भी रोक सकते हैं स्टार्टिंग में, तो क्या हेपेटाइटिस को रोकने के लिए वैक्सीनेशन है कोई? की?
0: हाँ हाँ।

0: हेपेटाइटिस ए और ई तो टेम्पोरारी, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सिरोसिस नहीं करवाते हैं। मेन हेपेटाइटिस बी और सी है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि मान लीजिए कोई हेल्थ वर्कर है, जिनके परिवार में जो ब्लड रिलेटेड कोई साथ वाले को अगर है, तो उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करवाने से आगे जाके इन्फेक्शन होने का संभावना कम होता है। उसका शेड्यूल और उसका जो वैक्सीन अवेलेबल है वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और शेड्यूल भी 3 डोज होता है, एक 6 महीने का टोटल ड्यूरेशन का 3 डोज होता है। अगर परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी है, या तो हेपेटाइटिस बी होने का संभावना ज्यादा है, तो उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए।
1: तो अगर बात की जाए कि किसी व्यक्ति को इससे ग्रसित हो चुका है और सिम्टम्स भी आ ही चुके हैं, ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो ट्रीटमेंट कितने महीने तक चलता है? मतलब क्या बहुत लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट होता है इसका?
0: हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी किस स्टेज में डायग्नोसिस हो रहा है, ये जरूरी है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी लिवर बहुत ज्यादा खराब हो गया है, सिरोसिस का स्टेज तक आ गया है, तब तो ट्रीटमेंट लंबा चलता है। अगर सिरोसिस नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेज में पकड़ में आ गया है, तो ट्रीटमेंट लिमिटेड है। हेपेटाइटिस सी आज की डेट पे क्योरेबल है। 3 महीने या 6 महीने का ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरीके से हेपेटाइटिस सी खत्म हो जाता है। अगर पेशेंट को सिरोसिस डेवलप हो गया है, तो 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद हेपेटाइटिस सी क्योर हो जाता है। अगर सिरोसिस नहीं डेवलप हुआ है, तो 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वायरस निगेटिव हो जाता है ऑलमोस्ट 98-99% में। जो 1% में है उसके लिए भी ऑप्शन है, पर हेपेटाइटिस बी उतना आसान नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी का अगर सिरोसिस डेवलप हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी 100% शरीर से नहीं निकलता है। क्योंकि जो डीएनए का टेस्ट करते हैं, वो अगर नेगेटिव हो भी जाता है, तो खून में नेगेटिव हो गया है, पर वो वायरस अभी भी लीवर, तिल्ली यहाँ पे छुपा हुआ है। तो जब भी दवा काम होगा, वो वापस आएगा और लीवर कैंसर करवाने की संभावना रहता है। तो हेपेटाइटिस बी इस तरीके से इतना आसानी से नहीं जाता है। और हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट में हमें मेन चीज ध्यान रखना है, हम यहाँ पे लीवर कैंसर और आगे जाके सिरोसिस होना रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट एक ही दवाई है, वो एक ही गोली दिन में एक बार चलता है, अगर उतने पे भी रहता है, तो आगे जाके कैंसर होने का संभावना, आगे जाके और 10 साल बाद की जिंदगी में सुधार रहने का संभावना ज्यादा रहता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो ट्रीटमेंट होता है, उसका भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कितने पे कितना देना है, नहीं देना है। सिरोसिस वाले को तो लाइफ लॉन्ग चलना है। और दवा के साथ एक चीज और जरूरी है, जो हेपेटाइटिस बी है वो कैंसर करवाने का बहुत बड़ा उसका रोल रहता है। तो हर 6 महीने में एक LFT और अल्ट्रासाउंड करवाना ही करवाना है, चाहे यहाँ पे रहे, कहीं भी रहे, किसी डॉक्टर से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पर ये सर्वेलेंस में ये पार्ट है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी में अगर जो गांठ बन रहा है,

0: वो अगर 3 सेंटीमीटर के ऊपर चला जाता है फिर ज्यादा ऑप्शन नहीं बचता है, और 3 सेंटीमीटर का नीचे रहने पे वो जलाया जा सकता है, सर्जरी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये जान बचाने और जान खत्म होने पे सवाल हो जाता है। तो एक अल्ट्रासाउंड और एक LFT वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, हर 6 महीने में करवाना जरूरी है। ये पाया गया है अगर 1 साल लेट हो जाता है तो ये गांठ अगर बन रहा है तो बड़ा बन जाएगा, फिर ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हर 6 महीने में ट्रीटमेंट अगर दवा पे है या ना है, अगर हेपेटाइटिस बी की मरीज है, हर 6 महीने में LFT अल्ट्रासाउंड करवाना ही करवाना है।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हेपेटाइटिस ए है और ई है, ये तो हम कह सकते हैं कि गंदे पानी की वजह से हुआ है, तो सोचता है समय के साथ साथ वो धीरे धीरे क्योर भी हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हेपेटाइटिस सी है वो तो क्योरेबल है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है वही सबसे ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, और हमारे स्वास्थ्य को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है कि शायद हमें लाइफ टाइम तक दवाई खानी पड़े, लेकिन उससे हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, क्योरेबल तो शायद तुरंत ना हो पाए। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे आपने बताया टेस्ट SGPT, SGOT, बिलिरुबिन, अगर किसी व्यक्ति की ये पैरामीटर्स बढ़े हुए हैं तो क्या उसे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है, कि या ये समझ सकता है कि शायद उसको हेपेटाइटिस ए हो गया हो या ई हो गया, जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा?
0: ये जो LFT में बिलिरुबिन, SGOT, SGPT है, अल्कालाइन फॉस्फेटेस है, ये अलग अलग चीजों की तरफ बताता है। जैसे SGOT, SGPT हेपेटोसाइट लीवर का जो सेल है उसका डैमेज बताता है, वैसे अल्कालाइन फॉस्फेटेस होता है जो बाइल डक्ट है उसकी तरफ बताता है। ये जब भी SGOT, SGPT या बिलिरुबिन या अल्कालाइन फॉस्फेटेस बड़ा हुआ रहेगा, सबसे पहले तो एक अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि ये प्राइमरीली लीवर सेल्स के डैमेज की वजह से हो रहा है या बाइल डक्ट के डैमेज की वजह से हो रहा है। अगर सिर्फ लीवर सेल्स के डैमेज की वजह से हो रहा है तो ये लीवर जो हेपेटाइटिस वायरस होता है उसके वजह से हो सकता है। पहला जो 2-3 चीजें देखना है कि अल्ट्रासाउंड में कोई बाइल डक्ट में डैमेज है कि नहीं, लीवर में कोई गांठ है कि नहीं, और पेट में पानी बन रहा है कि नहीं, उस हिसाब से पता चलेगा ये सिंपल हेपेटाइटिस है कि आगे जाके सिरोसिस होने का संभावना।
1: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे उनको, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख सके, जिससे वो जॉइंटिस, पीलिया जिसे हम कहते हैं, या अन्य जो लीवर से जुड़ी बीमारी है उससे न ग्रसित हों?
0: अंतिम में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा खाना बहुत जरूरी है, और आज के दिन में जैसे वायरस के वजह जो हेपेटाइटिस है उसके साथ साथ फैटी लिवर भी बहुत बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ एक्सरसाइज, योगा और लाइफस्टाइल सही रखना बहुत जरूरी है। हर रोज आधे घंटे से 45 मिनट थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करें, 15-20 मिनट योगा करें, साफ सुथरा खाना खाएं, तो लीवर और सेहत दोनों सही रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे सभी श्रोताओं को बताया कि जो हेपेटाइटिस होता है या जिसे कहते हैं लीवर की सूजन, अगर हमारा लीवर में स्वेलिंग आ जाती है तो वो किन वजह से आती है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं अगर आपको इनमें से जुड़ी कोई भी अगर बीमारी हो चुकी है। तो सर, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कार्यक्रम में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लीवर की सूजन, हेपेटाइटिस, कारण व निवारण, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रीतम से देवाशीष की ये भेंटवार्ता, और इसी के साथ ही आज का स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
3: FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बुंदेली लोकगीतों का खुशबू माटी की। कार्यक्रम का पहला वर्षा गीत आपको सुनवा रहे हैं बद्री प्रसाद परदेसी की आवाज में।
4: भैया कछु अनमने दिखा रहे कावा।

0: कहे भैया कछु अनमने दिखा रहे का बात है
1: भैया। एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
0: हैं अपन को भैया पता नहीं है आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
1: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया।
0: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
1: कैसे पाए समस्या को समाधान?
0: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हो हमारे किसान भैया परेशान।

0: लड़का बिटिया तन कई होत सयाने और बाप ने कर दो ब्याह सुखन खो जीवन सदा नसाने।
1: अरे भैया
0: अरे तो भौरिया।

श्रोता, ये बाल विवाह लोकगीत आप सुन रहे थे दिलीप कुमार रायकवार व साथियों की आवाज में। अब आपको सुनवा रहे हैं पन्ना लाला सर की आवाज में एक और लोकगीत।

वाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्नपत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे

श्रोताओं, कार्यक्रम में आखिरी गीत आप सुन रहे थे पन्नालाल असर की आवाज में। इसी के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की अब यहीं समाप्त हुआ। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा।

बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। चार बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुख सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने

0: विनीत के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे, जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मॉनसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित है एक ही कलाकार पर।

जिसमें आज के कलाकार हैं किशोर कुमार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं दोस्ताना फिल्म से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: से जुदा
1: श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज में गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित है एक ही कलाकार पर, जिसमें आज के कलाकार हैं किशोर कुमार। कार्यक्रम में आगे भी आपको और भी गीत सुनवाएंगे, उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे मुनीम जी फिल्म से। आवाज थी किशोर कुमार की, गीत को लिखा था साहिर ने और संगीत दिया था एसटी वर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित है एक ही कलाकार पर, जिसमें आज के कलाकार हैं किशोर कुमार। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से। गीत को लिखा है इंदी वर्ण ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे मंजिल फिल्म से। आवाज थी किशोर कुमार की, गीत को लिखा था योगेश ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित था एक ही कलाकार पर, जिसमें आज के कलाकार थे किशोर कुमार। ये कार्यक्रम अब यही समाप्त हुआ।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
3: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
2: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमार्फी पर हुए हमले के बाद भारत में

0: के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी

तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over NEET issue. Uttar Pradesh government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protests.

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म बहु बेगम का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों के थे। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म सलाखे का गीत सुना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। मोहम्मद

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: एफएम 101 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो झांसी, फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है विवेक चौबे का और प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।
1: हेलो झांसी।

0: लो झांसी।
1: हमारे सभी संगीत प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम हेलो झांसी में, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त विवेक चौबे। दोस्तों, सुरों की महफिल वह जादुई मंच है जहां शब्द खामोश हो जाते हैं और केवल भावनाएं बोलती हैं। यह संगीत और दिलों का ऐसा पावन मिलन है जो श्रोताओं को एक नई दुनिया में ले जाता है। और श्रोताओं, आज की यह शाम आम नहीं है बल्कि सुरों और संवेदनाओं का संगम है। संगीत वह भाषा है जिसे किसी सरहद या शब्द की जरूरत नहीं होती, यह सीधे रूह को छूती है। संगीत हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है जो सुख और दुख दोनों में हमारा साथी बनता है। जब जीवन की भागदौड़ से मन थक जाता है तब एक सुरमई महफिल ही मरहम का काम करती है। तो आइए श्रोताओं, इस महफिल को और रंगीन बनाने के लिए लेते हैं आज की शाम का पहला कॉल और देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनकी फरमाइश। हेलो झांसी,
2: श्रोता प्रमोद कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ सर।
1: जी प्रमोद जी, कैसे हैं आप?
2: मैं सर बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर?
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ।
2: हाँ सर, मैं एक गाना सुनना चाह रहा हूँ।
1: जी प्रमोद जी, पहले अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
2: सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। हाँ, लेकिन सर अभी पानी नहीं बरस रहा है तो उसका इंतजार कर रहे हैं कि भगवान पानी जल्दी से जल्दी बरसे तो खेत में धान लगाने की वो हो जाए।
1: तो हाँ, बारिश का इंतजार है आपको?
2: हाँ सर, बारिश का इंतजार है, लेकिन अब क्या करें, अपने हाथ में थोड़ी है सर, वो तो परमात्मा के हाथ में है, जब बरसेगा।
1: जी बिल्कुल, ये भगवान के हाथ की बात होती है। तो क्या
2: और सर मैं पिक्चर का नाम है जान।
1: जान फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
2: हाँ, नैनो में महबूब के देखूंगी।

0: हेलो झांसी।
1: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। जी सर जी।
0: जी लोकेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, रेडियो की दुनिया में रहते हैं और आपका प्रोग्राम मैं भी प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता हूँ। अच्छा प्रोग्राम रहता है सर, तो खास करके मैं फोन वाले प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी, फोन इन कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें फोन कॉल आपके शामिल हो जाते हैं।
1: जी शामिल भी हो जाते हैं और फिर सर अलग अलग राज्यों से सभी मित्रों के फोन आते हैं, दूर दूर से भी फोन आते हैं, तो उनकी सबकी बातचीत सुनने को मिल जाती है और उनके वहाँ के कल्चर कैसा है, वहाँ का इतिहास कैसा है, इसके बारे में भी सब सुनने को मिल जाता है, इसलिए ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत अच्छा है कि अलग अलग राज्यों से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। क्या करते हैं लोकेंद्र जी आप?
1: सर जी, मैं हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा और काफी 40 सालों से इसी बिजनेस को कर रहे हैं और रेडियो की दुनिया में मस्त रहते हैं सर।
0: तो काम के साथ साथ आप रेडियो सुनते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सर जी, अब तो ये प्रसार भारती का ऐप आ गया है तो इसमें साफ स्पष्ट क्वालिटी में सुनाई देता है तो अच्छा लगता है। जब पुराने दौर में रेडियो पे सुनते थे तो इतना दूर दूर के स्टेशन कवरेज नहीं मिलता था
0: जी।
1: पर अब जब से ऐप आया है तो ऐप से रेडियो की दुनिया और आगे बढ़ चुकी है
0: जी। तो जी सर, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: सर ये गाना है महेंद्र कपूर साहब की आवाज में, वो बोले सर, वो शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, वो है ना, वो शंकर मेरे कब होंगे दर्शन।

0: हेलो झांसी।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, शुभ नाम बताएं अपना।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव
0: जी। मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस श्रीमान जी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से, मैं बढ़िया हूँ।
0: चलिए क्या करते हैं
1: जी? सर जी कपड़े वाली सिलाई मशीन चलाते हैं सर जी, टेलर है सर जी।
0: सिलाई का काम करते हैं आप?
1: जी हाँ। अच्छे
0: हैं, लोगों को कपड़े बना करके पहनाते हैं
1: जी हाँ।
0: तो रेडियो सुनते हैं?
1: बिल्कुल, क्या कहें सर, रेडियो बराबर आपका आकाशवाणी झांसी से अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम जो आपके आते हैं बराबर सुनते रहते हैं, सुबह से शाम तक आपका कार्यक्रम ध्यान पूर्वक सुनते हैं।
0: बहुत अच्छा है।
1: रात के 10:30 बजे तक आपका कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं।
0: चलिए, काम के साथ साथ आप गीत संगीत को भी पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, रेडियो से सर जी लगाव है, इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक प्रेम है कि रेडियो बिना नहीं रह सकते सर, बराबर सुनते हैं।
0: चलिए अच्छा है, तो क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: सर जी आज का फरमाइश है, फिल्म का नाम रहेगा किंग अंकल, उसमें गाना है इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें।

0: हेलो झांसी
1: हेलो।
0: जी, शुभ नाम बताएं अपना।
1: हाँ सर, नमस्कार। रामचंद्र मखीजा काफिर भाई बोल रहा हूँ, बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से। सर
0: जी, क्या करते हैं रामचंद्र जी?
1: मेरा रेडीमेड का काम है सर, छोटा सा सिले सिलाए वस्त्र जैसे नहीं बेचते हैं, टी शर्ट नाइटी जीन्स
0: जी
1: वगैरह हो गया, शर्ट और साइड में अपना गमछा वगैरह रुमाल इस टाइप का बेचते हैं।
0: तो
1: जी
0: रेडीमेड कपड़ों का काम करते हैं आप?
1: जी सर।
0: जी, तो
1: और
0: क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: आज कारगिल दिवस विजय दिवस है सर, हमारे वीर शहीद जवान विजय प्राप्त किए थे और जो अपना बलिदान दिए उनको नमन करते हैं। आप सुनाइएगा। ये सर झुका है न झुकेगा सर, वतन का हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम।

0: हेलो झांसी
1: हेलो झांसी
0: जी। हेलो झांसी में स्वागत है आपका। कौन
1: जी
0: बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं झांसी से बोल रहा हूँ। जी मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं प्रेम कुमार जी आप?
1: बस मैं ठीक हूँ, और आपका जो प्रोग्राम है हेलो झांसी
0: जी
1: वो मैं सुनता हूँ, और कभी कभी कॉल लग जाती है।
0: तो जी क्या करते हैं गौतम जी आप?
1: सर मैं लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ
0: जी,
1: और करीब 40-45 साल से
0: जी
1: मैं लेखन से जुड़ा हूँ। लिखता हूँ कविताएं, कहानियाँ, और इसी में मेरा समय व्यतीत होता है, और कोशिश होती है समाज को कुछ मेरे लेखन से मिल सके तो मेरा लेखन और मेरा जीवन सार्थक हो जाए।
0: बहुत अच्छा है कि अपने लेखन से आप समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या फरमाइश है आज आपके कार्यक्रम में?
1: जी मेरी फरमाइश गाने के बोल है, वो है प्रीत यहाँ की री सदा।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का हेलो झांसी का सफर अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। श्रोताओं, आज जिन दोस्तों की कॉल इस कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं, उनसे निवेदन है कि आगामी 2 माह के बाद ही आप कॉल करें, ताकि हमारे और श्रोताओं को भी कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मिल सके और अपने पसंदीदा गीतों को सुनने का भी मौका मिल सके। श्रोताओं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें कॉल करें। जुड़ने के लिए फोन नंबर है 0510-232-0068। आपके फरमाइशी गीतों ने आज के कार्यक्रम को और भी खास बना दिया, तो इसी तरह अपना प्यार इस कार्यक्रम से बनाए रखें, क्योंकि आपके फोन कॉल ही हमारे कार्यक्रम की पहचान है। तो इसी के साथ अब दीजिए रेडियो दोस्त विवेक चौबे को नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था विवेक चौबे का और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म से। इसमें आवाज है अनुराधा पौडवाल और बिपिन सचदेवा की, और तर्ज बनाई है आनंद मिलिंद ने, और गीत को लिखा है समीर ने।

टाइम आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न रहे।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे नवरंग फिल्म से। आवाज थी महेंद्र कपूर, आशा भोसले की और सी रामचंद्र की। गीत को लिखा था भरत व्यास ने और संगीत दिया था श्री रामचंद्र ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। अब आपको सुनवा रहे हैं कलाकार फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और अनुराधा के स्वर में। गीत को लिखा है इंदी वर्मन ने और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे राम लखन फिल्म से मनहर उदास और नादा पौडवाल की आवाज में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके पहले हमने जो गीत सुनवाया था वो गीत सुनवाया था हमने आपको अनपढ़ फिल्म से, और गीत में आवाज दी थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, और संगीत दिया था मदन मोहन ने, और गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने। इसी के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त हुआ। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है।

एफएम 101 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में पहली कलाकार है रेखा भारद्वाज।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार थे हरिहरन और रेखा भारद्वाज। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। माफ कीजिएगा, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य

0: के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the 6th consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House. House.
3: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then